0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरूग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरूआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुफ्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉ एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी न्यूज़ रेड बाय शगुन चोपड़ा।

0: विजयलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मनीषा और
1: रेनू का
0: राम राम। देखिए ना रेनू, तपती गर्मी है, इतनी तपिश है हवा में, गर्म लू भी चल रही है ना, तो मौसम में बहुत से बदलाव आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ठंडक भी थी, लेकिन अब बहुत गर्मी है। और ऐसी गर्मी में हमारी बहनें जो हैं वो बाहर भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं और सब कुछ संभालती हैं एक मुस्कान के साथ।
1: बिल्कुल सही बात है मनीषा, बिल्कुल ठीक कहा। और देखो, अब जैसे हम अपनी ही बात करें, हम बहनें भी तो बहुत गर्मी में चलते हुए आई, और सच में ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल गर्म हवा लू के थपेड़े चल रहे हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल लू के थपेड़े चल रहे हैं। और ऐसी लू में हमें अपनों का और अपना भी बहुत ध्यान रखना है। पानी लगातार पीते रहना है, नींबू पानी पिए, शिकंजी पिए, बहुत सी चीजें हैं जो हमें गर्मी से बचा सकती हैं। और रीनू ने जैसी बात कही कि हाँ भाई, हम भी बहुत दूर से आए हैं अपनी बहनों से बातचीत करने, उनसे रूबरू होने, और साथ ही हमारी बहनें भी बहुत बेसब्री से इंतजार करने बैठी हैं आज के हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो शुरुआत करते हैं इस बेहद प्यारे से गीत के साथ।

0: देखिए रेनु, अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं और अपनी बहनों से हम इतनी दूर होते हुए भी बातचीत कर रहे हैं, तो यही जो साधन है ना, ये संचार है। यानी कि हमारे आपसी मेलजोल और रिश्तों का आधार है संचार।
1: बिल्कुल,
0: चाहे परिवार हो, दोस्तों से बात करना हो, सहकर्मियों से सहयोग करना हो, या कोई भी जानकारी देश की हो या विदेश की हो,
1: बिल्कुल,
0: तो संचार के माध्यम से बड़ी आसानी से ली जा सकती है।
1: बिल्कुल। और मनीषा, मैं समझ भी गई कि ये बात तुमने हमारी बहनों को क्यों कही। ये बात तुमने हमारी बहनों को इसलिए कही क्योंकि आज है 17 मई, और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और हम अपनी बहनों को यह भी बता दें कि यह जो दिन है, 17 मई 1865 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, और इसीलिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वर्शन पर हस्ताक्षर किए जाने की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। और वही उद्देश्य तो इसका तुमने बता ही दिया है कि मुख्य उद्देश्य हमारे समाज और अर्थव्यवस्थाओं में इंटरनेट और अन्य सूचना व संचार के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना, और साथ ही लोग इसके प्रति जागरूक हों। सबसे बड़ी बात यह जाने कि हम दूर होते हुए भी कैसे हम संचार कर सकते हैं, यही दूर संचार है। देखो, जैसे अब हम अपनी बहनों से दूर रहते हुए बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातें उन तक पहुंचा पा रहे हैं।
0: बिल्कुल रेनू, पहले होता था ना, पुराने समय में हम संचार किसी महासागर के पार संदेश फेंकने जैसा था, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती थी कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज बहुत से साधन है, हमारे पास टेलीविजन है, टेलीफोन है, जिसके जरिए हम अपनी बात आसानी से विश्व तक पहुंचा सकते हैं, अपने अपनों तक पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम अपनी बहनों को एक और रोचक बात भी बता दें, जैसे कि बहुत बड़ा नाम लगता है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, तो हम यह बता दें कि पहले ये जो दोनों दिवस थे अलग अलग मनाए जाते थे, मगर वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन दोनों को मिलाकर एक ही दिन यानी कि 17 मई आज के दिन मनाने का निर्णय लिया।
0: जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं हमारी ये बहन क्या कह रही हैं अपने पिया से।
2: मेरे पिया

0: हमेशा हमारी रोजमर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर का काम भी बखूबी संभालती हैं और बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं।
1: जी हाँ, और ऐसे में कई जिम्मेदारियां कंधों पर उठाए वो अपनी सेहत को और कुछ शारीरिक जो बदलाव होते हैं उनको नजरअंदाज करती चली जाती हैं। और ऐसे में होता यह है कि अंदर कोई ना कोई ऐसे अभाव या बीमारी वो स्वयं पाल लेती हैं, जिसका भुगतान उन्हें ही नहीं उनके पूरे परिवार को भी करना पड़ता है। और ऐसी ही एक बीमारी है रेणु कैंसर की, और खास तौर पर महिलाओं में गर्भावस्था में जो कैंसर होता है वो बेहद खतरनाक होता है। तो ऐसे में हम अपनी बहनों को जानकारी के लिए एक बातचीत सुनवाएंगे। बातचीत का विषय रहेगा महिलाओं में गर्भावस्था कैंसर की समस्या और उपचार। बातचीत में भाग ले रही हैं डॉक्टर उर्वशी मिगलानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और इनसे बातचीत कर रही हैं नवोदिता मिश्रा।
0: तो चलो मनीषा, हम अपनी बहनों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत सुनवाते हैं।
2: नमस्कार, हमारे साथ हैं आज डॉक्टर उर्वशी मिगलानी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। स्वागत है मैम आपका।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। जो हमारा विषय है आज का, जिस पर हम ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, वो है गर्भाशय का कैंसर। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि गर्भाशय का कैंसर असल में होता क्या है?
4: गर्भाशय के दो भाग रहते हैं, गर्भाशय जिसे हम यूट्रस कहते हैं उसका कैंसर भी हो सकता है, या गर्भाशय ग्रीवा जिसे गर्भाशय का मुख कहते हैं सर्विक्स उसका कैंसर। तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है जो कि बहुत ही जरूरी है जिसके बारे में समझना। शुरुआती चरण में तो हम उसका उपचार सिर्फ सर्जरी से कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो फैलता जाता है तो फिर हमें दवाइयां और रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि गर्भाशय ग्रीवा जो हमारे जिसमें बच्चा पनपता है उसके मुख का कैंसर के साइन क्या हो सकते हैं।
2: बहुत सारे कैंसर के विषय में हम सुनते हैं कि पता इतनी देर में चलता है कि जहां पर इलाज मुश्किल ही होता चला जाता है। तो ऐसे केस में गर्भाशय का जो कैंसर है उसके जो अर्ली साइंस जैसे हम कहते हैं एकदम शुरुआत में पता चल सके, ऐसे क्या सिम्टम

0: बहुत ही जरूरी है हमारी ग्रामीण महिलाओं को समझना। महावारी हर महिला को हर माह में आती है। अगर वो महावारी 2 माह के बीच में आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, संबंध बनाने के बाद जरा सा भी खून का दाग लगना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि ये कैंसर की शुरुआत हो सकती है। महावारी बंद होने के बाद, जिसे हम रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं, उसके बाद अगर 6 माह के बाद कभी भी खून का दाग लगे तो उसे कैंसर का साइन माना जाता है। अब ये हमारी ग्रामीण महिलाएं और बहुत ही समझदार एजुकेटेड महिलाओं में भी ये एक प्रवृत्ति है कि जब मीनोपॉज हो रहा होता है उस टाइम महावारी ज्यादा आ सकती है। ऐसा नहीं है। नॉर्मल मीनोपॉज में हमेशा महावारी कुछ ज्यादा समय पे आएगी और कम आएगी। अगर महावारी बंद होने के समय, जैसे 45 साल की उम्र के आसपास, किसी को महावारी बहुत ज्यादा आ रही है या कम समय के बाद, मेरा अर्थ है जैसे 15-15 दिन के बाद आ रही है और ज्यादा आ रही है, ये भी शुरुआती कैंसर का चरण हो सकता है। तो इसलिए अगर ऐसा सिम्टम हो तो आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। डॉक्टर जाते ही ये नहीं है कि आपको लगेगा कि ये कैंसर हो गया है। हम जांचें करेंगे, कुछ टेस्ट होते हैं जो करेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो इन्फेक्शन के कारण है या हॉर्मोन्स में कुछ गड़बड़ के कारण है या कैंसर का शुरुआती चरण है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब सिम्टम है तो आपने ये सोच के डर के बैठ जाना है कि कैंसर है। ये हो सकता है, ये एक संकेत है कि आप अपने घर से निकलें और अस्पताल में दिखाएं।
1: इसी बिंदु से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है डॉक्टर, कि क्या कोई खास उम्र है जिसमें इस तरह की सावधानी, मतलब जांच को लेकर ज्यादा बरतनी चाहिए कि अगर लक्षण आ रहे हैं तो किस उम्र के बाद और ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है?
0: बिल्कुल, देखिए जब हम कुछ वर्ष पहले देख रहे थे कि थोड़ी बड़ी उम्र की औरतें, जो 40 के बाद, 45 के बाद या और ज्यादा बड़ी उम्र की औरतें, उनमें गर्भाशय कैंसर देखा गया था। जो गर्भाशय का कैंसर है वो तो 50-55 साल के बाद देखा गया था और गर्भाशय ग्रीवा का थोड़ा 40 और 60 के बीच में, परंतु अब रिसेंटली ये देखा गया है कि ये थोड़ी कम उम्र की औरतों में भी ग्रीवा का और गर्भाशय का कैंसर बढ़ने लग गया है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, पॉल्यूशन, कुछ कारण जो हमें पता है कि मल्टीपल पार्टनर से कॉन्टेक्ट हो, जिनका विवाह बहुत जल्दी उम्र में हो जाए, जिनका पहला बच्चा बहुत जल्दी हो जाए, ये सब तो रिस्क फैक्टर है ही। तो आजकल के टाइम में ऐसा कोई उम्र नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये कैंसर मुक्त है। अगर आपको ये सिम्टम किसी भी उम्र में हो तो आपको दिखाना है। फिर भी 30 से कम की उम्र में इसके होने के संभावना बहुत ही कम है, परंतु फिर भी अगर आपको बहुत दिक्कत हो तो आपको जरूर दिखाना चाहिए। स्पेशली जो साइन है वो है संबंध के बाद अगर खून का दाग लग रहा है, ये तो एक ऐसा सिम्टम है जो किसी भी उम्र में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और बाकी के जो महीना ज्यादा आने की दिक्कतें हैं वो 30 के बाद।
1: यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे, जिस लक्षण का आप अभी जिक्र कर रही थी कि संपर्क के बाद जो खून का दाग आप बता रही हैं, तो वो क्या, जिसे हम स्पॉटिंग कहते हैं?
0: बिल्कुल,
1: कई बार होता है शायद औरतों को पता ही ना चलता हो इस संबंध में, मतलब और अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सके कैसे वो इस चीज को सुनिश्चित कर सकती है कि हाँ ये लक्षण है या ये नहीं है।
0: देखिए अगर वो सिग्निफिकेंट होगा या कुछ दाग लग रहा है तो वो पता चल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि गर्भाशय ग्रीवा पे कुछ चोट लगी हुई है, कोई इन्फेक्शन है या कैंसर की शुरुआत है और खून इतना कम जा रहा है कि पता ही नहीं चला। अगर वो दाग भी लग रहा है तो वो पता चल जाएगा, और अगर एक बार नहीं तो अगले संपर्क में पता चल जाएगा। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है, और ये ऐसी चीज नहीं है जो मिस हो जाती है।
1: अभी जिन लक्षणों की बात कर रहे थे तो अब बात आती है जांच की, कौन कौन सी जांच है और खासकर हमारी जो ग्रामीण और कस्बों की जो महिलाएं हैं उनके लिए किस तरह की जांच अभी उपलब्ध है ताकि इसका जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके, उसके विषय में आप थोड़ा बताइए।
0: देखिए महिलाओं को ये बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई भी आपको फाइनेंशियल या पैसा देने की जरूरत होगी। सारे सरकारी अस्पतालों में कैंसर की जांच फ्री है, छोटे अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल में। सबसे पहली जांच जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की है वो है पैप्समियर। पैप्समियर हम बच्चेदानी के मुंह, जिसे गर्भाशय ग्रीवा का मुख है, उसे थोड़ा स्राव लेते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, आपको कोई बेहोश नहीं करना है, आपके साथ किसी भी रिश्तेदार को आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 या 2 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट 2 हफ्ते में आ जाता है और उससे हमें पता चल जाता है कि सब नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल है तो आपको 3 वर्ष तक ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने मरीजों को कहती हूँ कि प्रकृति ने हमारी बहुत मदद की है इस चीज में कि जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है उसके शुरुआती चरण से आखिरी चरण तक जाने में 15 से 20 वर्ष लगते हैं, जो कि नॉर्मल से कैंसर बनने के बीच में भी 3 चरण है जिसको 15 वर्ष लगते हैं। तो हम अगर उस 15 वर्ष में एक बार भी पैप्समियर करा लेते हैं और उस चरण को पकड़ लेते हैं तो हम उसको कैंसर बनने से पहले ही उसका रोक लेते हैं, और उसमें बच्चेदानी नहीं निकालनी पड़ती, हम सिर्फ गर्भाशय ग्रीवा के मुख का इलाज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि पैप्समियर कराने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका नॉर्मल आ गया पैप्समियर तो 3 वर्ष तक आपको कुछ नहीं कराना है।
1: एक और

0: गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाए। अगर वो टेस्ट, जैसे हमारे कुछ मरीज जो करा पाते हैं, अगर वो टेस्ट बाहर से पैप्समेयर के साथ कराते हैं, वो किट ले आते हैं और हम कर देते हैं और वो टेस्ट नॉर्मल है, तो आपको 5 वर्ष तक कुछ नहीं कराना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर 6 महीने में अस्पताल जाने की जरूरत है। आप एक बार वो टेस्ट कराएं और 3 वर्ष या 5 वर्ष तक आपको दोबारा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कैंसर के बारे में, अगर वो नॉर्मल आया है।
1: जब हम ग्रामीण और कस्बों की महिलाओं की बात करते हैं या कुछ अर्बन महिलाओं की भी बात कर सकते हैं, इसमें एक थोड़ा संकोच का एक तत्व होता है। जैसे इस तरह का जो टेस्ट है, उनको लगता है दिमाग में ऐसा कि जो प्राइवेसी है वो कहीं भंग हो रही है। तो उस विषय में अगर आप थोड़ा सा हमारी सुनने वाली महिलाओं को अगर आप थोड़ा जागरूक करना चाहें।
0: ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि ये हमने भी महसूस किया, हमने बहुत सर्वे किए तो हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अस्पताल आने में यही डर और संकोच होता है कि वो दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए एक HPV टेस्ट की ही एक किट आ गई है जिसे हम सेल्फ सैंपलिंग किट कहते हैं। वो किट अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं आई है, हम काफी कोशिश कर रहे हैं उसको लाने की। काफी कैंप्स वगैरह में और प्रोजेक्ट्स में उसे यूज किया गया है। उसमें महिला को हम समझा देते हैं कि कैसे टेस्ट लेना है, और मोबाइल वैन्स हैं जो चलती हैं, उनको किट दे देते हैं, वो खुद ही टेस्ट लेके हमें दे देते हैं और वो टेस्ट प्रोसेस हो जाता है लैब में, उनके पास रिपोर्ट आ जाती है। तो इससे उसकी रिपोर्ट भी उतनी ही अच्छी है जितनी हमारे टेस्ट लेने की है।
1: अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम पहले ही होने से पहले, जैसे हम HPV वैक्सीन के बारे में बहुत सुनते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां, कौन सी सही एज है, किस एज के बाद ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, इस तरह के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा एक इकलौता कैंसर है हमारे पूरे शरीर में जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन है और एक ऐसा टेस्ट है। वो सिर्फ तब नहीं कराना है टेस्ट जब आपके पास कोई लक्षण हो रहे हैं, वो नॉर्मल महिला को भी कराना है। इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट। जो वैक्सीन है उसकी सही एज है 9 से 14 वर्ष की लड़कियां, लड़कों को भी लगाया जा सकता है। 9 से 14 वर्ष में पहले हम 2 डोजेज लगा रहे थे, अब WHO ने कह दिया कि आप 1 डोज भी लगा सकते हो। अभी हम काफी उस पर काम कर रहे हैं कि वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ जाए, तो जैसे आपके बच्चों को नॉर्मल सारे पोलियो DPT वैक्सीन लगते हैं वैसे ही ये भी लग जाएगा। अगर आप तब नहीं लगा रहे हैं तो 14 वर्ष के बाद उसे हमारे इंडिया में हम 45 वर्ष तक लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तब होगा अगर मैरिज से पहले या संपर्क से पहले उसे लगाया जाए। पहले संपर्क के साल की महिला है जिसका एक बच्चा है और अब उसको लग रहा है कि उसको लगाना है, तो वो डेफिनेटली वो लगवा सकती है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि उसका जो असर है वैक्सीन का वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि एक 15 साल की कन्या में होगा, जिसने कभी भी, क्योंकि ये वैक्सीन है HPV इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जिस मरीज को HPV इन्फेक्शन या कॉन्टैक्ट हो चुका है उस पर ये उतना ज्यादा असर नहीं करता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम बच्चों को पहले लगा दें। लेकिन अगर वो मिस हो गया है तो इसे बाद में भी लगाया जा सकता है और इंडिया में ये 45 साल तक अलाउड है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी।
1: तो ऐसा कोई डेटा है डॉक्टर जहाँ पे 40 से 45 के बीच की, मान लीजिए 35 से 45 के बीच की जो औरतें लगाती हैं तो वाकई ये प्रिवेंशन में मदद करता है?
0: देखिए, यही डाटा है कि उसका इफेक्ट बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू यंग फीमेल्स। लेकिन हम आजकल पूरे ग्लोबल लेवल पे ये हो रहा है कि अगर किसी को कैंसर से पहले के शुरुआती चरण डायग्नोज हुए हैं तो उसमें इलाज के साथ हम साथ में भी ये वैक्सीन लगा देते हैं। जो शुरुआती चरण बन गया उसको सही नहीं करेगा लेकिन वो बाकी के और इन्फेक्शन में प्रोटेक्ट करेगा, तो उसमें भी हम लगाते हैं। हम मरीज को बता देते हैं कि ये आप लगा सकते हो, ये आपको इलाज तो कराना पड़ेगा लेकिन ये आपको बाकी इन्फेक्शन से बचा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो उतना असरदार नहीं होगा जितना कि वो 14 वर्ष के बच्चे में। और वैक्सीन जो है आजकल 20 साल की उम्र तक हम 1 या 2 वैक्सीन, अगर पैसे की दिक्कत है अभी हमें खरीदना पड़ रहा है तो अगर हम 1 डोज भी लगा लेंगे 20 वर्ष तक वो भी सही है, और 20 वर्ष के बाद 2 डोज। अभी WHO ने उसको 3 डोज बोला हुआ है। इंडिया में अभी अलाउड ये है कि 20 वर्ष तक हम 1 डोज भी लगा सकते हैं, 2 डोज भी लगा सकते हैं।
1: जैसा कि आपने भी बताया जो साइको ऑन्कोलॉजी जो आप कह रही हैं, क्या ये सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर भी उपलब्ध है?
0: सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे ये नहीं होगी, वहाँ ही होगी जहाँ साइकेट्री सेंटर है। पर उसमें ऐसे है कि जो डॉक्टर डायग्नोज कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं, वो ही समझा देते हैं। जैसे जब हमारे पास अगर लगता है कई बार कोई मरीज हिचक रहे हैं या कि हम किसी और से नहीं बात करना चाहते, तो मैं ही या मेरी जो टीम है वो ही मरीज को और उनके रिश्तेदारों को समझा देती है और वो उपयुक्त होता है ताकि वो समझ पाए कि क्या करना है। बिकॉज बात करने से मरीज भी अपनी जो सारी शंकाएं हैं वो हमारे साथ शेयर कर लेता है और जो भी उनको समझना है वो हम उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेंटर पे स्पेसिफिकली काउंसलर अवेलेबल नहीं होगा, पर डॉक्टर भी काफी हद तक उनकी सारी शंकाएं दूर कर सकता है।
1: अंत में आप हमारी सुनने वाली महिलाओं को या उनके परिवार के सदस्यों को जो

0: कार्यक्रम सुन रहा है, कोई खास संदेश आप देना चाहेंगी?
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बारे में तो आपने बहुत विस्तार में हमारी ग्रामीण महिलाओं को बता दिया है, लेकिन कुछ ऐसे और सिम्टम हैं जो मैं बताना चाहूंगी महिलाओं को, जिनके बारे में भी ध्यान रखें, जो कि अंडाशय कैंसर के कारण हो सकते हैं, जैसे कि बड़ी उम्र में पेट फूलना, थोड़ा सा खाना खाने पे पेट भर जाना, पेट में दर्द होना, या बहुत ज्यादा थकावट लगना, जो शौचालय है या यूरिन की है उसकी आदत में बहुत ज्यादा बदलाव आना, ये वाले जो लक्षण है, अगर किसी को 12 या 13 दिन से ज्यादा हो रहे हैं एक माह में और 2-3 माह लगातार हो रहे हैं, इनफैक्ट 1 या 2 माह भी हो, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 1 या 2 दिन होने से चिंता की जरूरत नहीं है। ये सब अंडाशय कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।
0: जैसे कि पैपनेर है हमारे गर्भाशय ग्रीवा के लिए, तो क्या ऐसी कोई जांच इस केस में है या इसके लिए फिर हमें सीधे?
1: नहीं, अंडाशय कैंसर की विडंबना है कि हमारे पास उसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने मरीजों को हमेशा यही समझाती हूँ कि आपको अगर ये कुछ भी लगे तो पहले डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, जिनके परिवार में किसी को भी आंत या अंडाशय का कैंसर हुआ है उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको शुरू से ही अपना चेकअप कराते रहना चाहिए।
0: तो अपने सुनने वालों को यही कहना चाहेंगे कि बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बस लापरवाही नहीं बरतनी है, जांच समय पर कराते रहनी है और किसी भी परेशानी को छुपाने की जरूरत नहीं है। सबसे पास आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे बात करें, क्योंकि ये याद रखने की जरूरत है हमें कि जागरूकता से ही हमें इन स्थितियों में जीत मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उर्वशी आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे साथ इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए।
2: अभी हमारी बहनों ने सुनी बातचीत, महिलाओं में गर्भावस्था, कैंसर की समस्या और उपचार। डॉक्टर उर्वशी मिगलानी से नवोदिता मिश्रा बातचीत कर रही थी।

0: मनीषा जिंदगी हंसने गाने के लिए है और इस हंसती गाती जिंदगी में आकाशवाणी ने 90 सालों का रास्ता तय करते हुए हमारी बहनों के जीवन में एक मूक क्रांति उत्पन्न की है।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का दिल्ली स्टेशन एक ऐसा केंद्र बन गया जहाँ कई आवाजों को पंख मिली और इतिहास रचा गया माइक के द्वारा।
0: बिल्कुल, और आज आकाशवाणी जन जन की आवाज बन चुकी है और ये जो स्टेशन है कई स्टेशन का संचालन भी करता है आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का बाह्य सेवा प्रभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है और ये बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के आदर्शों पर खरा उतरता है।
0: बिल्कुल, और यमुना जो हमारी बहनें हैं वो रेडियो के माध्यम से ही लोक रंजनी, ग्राम संसार, कृषि जगत, गृह लक्ष्मी के साथ साथ अपने पसंदीदा कार्यक्रम भी सुनती हैं।
1: जी हाँ, और इन कार्यक्रमों से उनका ज्ञान तो बढ़ता ही है रेनू, और साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है। तो आकाशवाणी जैसे बढ़ता जा रहा है, बहता जा रहा है हवा के संग संग, वैसे ही हमारी बहनें भी गीत गुनगुनाती जा रही हैं।

0: मनीषा, आज भारत की वीरांगना क्रम में हम अपनी बहनों को बताएंगे कल्पना दत्ता के बारे में।
1: जी हाँ, अगर माथे से गुलामी का कलंक मिटाकर गर्व से जीना है तो अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों का साथ दो और हमारे साथ लड़ो। ये शब्द थे 14 साल की कल्पना दत्ता के, जिन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाया।
0: बिल्कुल, और देखो छोटी सी उम्र में ही इन्होंने विद्यार्थियों को निडरता से आगे बढ़ने, गुलामी की सोच से उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी प्रेरित किया था।
1: जी हाँ, इनका जन्म 27 जुलाई 1913 को चटगांव के श्रीपुर में हुआ था और चटगांव से शुरुआती इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए इनकी ललक जाग उठी।
0: बिल्कुल, और चटगांव लूट के बाद वे अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी भी बन गई थीं।
1: देश की आजादी में उनके योगदान को देखते हुए 1979 में इन्हें वीर महिला का खिताब दिया गया और बॉलीवुड में इनके जीवन पर खेले हम भी जान से नाम की फिल्म भी बनी है। तो ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हैं जिनसे आज भी हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इनको हम शत शत नमन करते हैं।
2: झुंड बोल मस्तकों के झुंड राज चल।

किसी हवस नहीं, किसी पे कोई हवस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।
1: आरंभ है प्रचंड

0: आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को भी मनाया जा रहा है और वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जिनमें एक जो मुख्य बीमारी है वो है बीपी, हाई बीपी। ये आम बीमारी बन चुकी है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो दिखते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी की बीमारियों का प्रमुख कारण बनती है।
1: बिल्कुल मनीषा, और देखो बहुत सारी बीमारियां उच्च रक्तचाप के कारण ही होती हैं, इसीलिए हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप मनाया जाता है, ताकि हमारी बहनें और सभी लोग जागरूक हों। और मनीषा, जो इस बार की थीम रखी गई है वो यही रखी गई है कि उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, और यह तभी होगा जब हमारी बहनें अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से मापेंगी और इसे नियंत्रित भी रखेंगी।
0: जी हाँ, जो सामान्य बीपी होता है रेनु वो होता है 120/80, लेकिन यदि 140/90 से ज्यादा बीपी हो तो वो हाई बीपी की कैटेगरी में आ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
1: तो इसके लिए देखो, हमारी जो बहनें हैं वो एक तो नमक कम करें, नमक का सेवन कम से कम करें, नियमित व्यायाम करें, वजन नियंत्रण में रखें और ताजी फल और सब्जियां खाएं, और इसके साथ साथ मनीषा नियमित जांच बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और तनाव नहीं लेना है, नशा मुक्ति अपनानी है। तो चलिए, अगर सर चकरा जाता है ऐसे में तो ये एक प्यारा सा गीत सुनना है।

0: हमेशा हमारी बहनें अपनी रसोई में ऐसा भोजन बनाती हैं कि उंगलियां चाटते रह जाएं, और देखो घर में जितने भी लोग फरमाइश करते हैं अलग अलग तरह की सब्जियां भी बनाती हैं।
1: जी हाँ, फरमाइश तो करते हैं रेनू, लेकिन फरमाइशें कभी कभी बहुत महंगी भी पड़ जाती हैं, है ना। महंगाई के इस दौर में किचन का बजट संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: क्योंकि हम सब्जी जब बाजार में खरीदने जाते हैं तो सोच के जाते हैं कि भाई इतने में आ जाएगी और उसका बजट बैठता है डबल।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हमारी जो आवश्यकता बढ़ जाती है किचन गार्डन की, और किचन गार्डन एक ऐसा समाधान बन जाता है रेनू हमारे लिए कि जो घर बैठे खाली समय का सदुपयोग कर बिना रसायन वाली ताजी सब्जियों के लिए बेहद उपयुक्त।
0: बिल्कुल। और देखो अब हमारी बहनें ये भी सोच रही होंगी कि किचन गार्डन का हमने सुझाव तो उन्हें दे दिया, पर वो उसको कैसे करें। तो देखो बहुत ही आसान है, जब वो किचन गार्डन बनाए तो उसके लिए उन्हें कुछ भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर जाना पड़े, घर की बनाई खाद का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात मनीषा, छोटे से शुरू करें। अगर जगह कम है तो पुरानी कोई बाल्टी हो गई, मिट्टी के घड़े हो गए, तो इनमें भी टमाटर मिर्च और धनिया उगाया जा सकता है, पर धूप का एक छोटा सा कोना चाहिए होता है।
1: जी हाँ, और पौध की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का सही होना जरूरी है। आप पास की किसी नर्सरी से मिट्टी लें या फिर साधारण मिट्टी में भी गोबर की खाद मिला सकते हैं। और एक बात और है अहम रेनू, कि इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी लोगों को जागरूक कर रहा है।
0: बिल्कुल। और देखो जैसे कि तुमने मिट्टी की बात कही, अगर उसमें कीड़े लग जाते हैं फिर तो कीड़ों से बचाव का भी बड़ा देसी नुस्खा है कि अगर कीड़े लग जाएं तो आपको घबराना नहीं है, नीम का पानी या राख का छिड़काव कर दें, वह पूरी तरह से सुरक्षित है और साथ ही बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है।
1: जी हाँ, यानी कि पैसों की बचत और स्वादिष्ट हरी ताजी सब्जियां, यानी आम के आम, गुठलियों के दाम।
0: बिल्कुल।

0: मनीषा, हमारी बहनें ये जो कार्यक्रम सुन रही हैं, हम बहनों को बता दें कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर
1: जी हाँ, और कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही कार्यक्रम का पता भी हम बता देते हैं, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, आकाशवाणी, नई दिल्ली 110001।
0: और अगर हमारी बहनें हमें मेल करना चाहती हैं तो हमें भेज सकती हैं feedback@fnh.gmail.com पर।
1: जी हाँ, और अब बात करते हैं रेनू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसने हमारी कई बहनों को आंसू मुक्त कर दिया है, है ना। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी और ये प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है। मुफ्त कनेक्शन, गैस चूल्हा, सब्सिडी जो सीधे लाभार्थी के खाते में आती है।
0: बिल्कुल, और देखो मनीषा, इससे जो खतरनाक धुएं से भी हमारी बहनें बची रहती हैं, और एक तरह से देखा जाए तो जब वो धुएं से बची रहती हैं तो जो उनकी आंखों का कचरा है वो खराब नहीं होता, वो धुएं की राख से या धुएं की उसमें बहता नहीं है।
1: जी हाँ।

निशा, हमारी बहनों ने कार्यक्रम सुना और बातें तो करने का बहुत मन है, लेकिन बातें हम आगे भी करते रहेंगे। अभी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि हम अपनी बहनों को बोलें, बहनों राम।

0: अभी आपने सुना ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने

चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। सातवीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर लेकर आई हूं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जिसमें है प्यार, परिवार, गलतफहमियां, भावनाएं और संगीत का ऐसा जादू जो आज भी दिलों में उतर जाता है। जी हां दोस्तों, आज की हमारी महफिल सजी है साल 1969 में रिलीज हुई एक बेहद खूबसूरत फिल्म अनजाना के नाम। एक ऐसी फिल्म जिसने अपने समय में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और जिसके गीत आज भी संगीत के दीवानों की जुबान पर रहते हैं। फिल्म अनजाना का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक मोहन कुमार ने और फिल्म के मुख्य किरदारों में थे हिंदी सिनेमा के जुबली स्टार राजेंद्र कुमार, खूबसूरत और जुबली अदाकारा बबीता, दमदार अभिनेता प्राण, खतरनाक अंदाज वाले प्रेम चोपड़ा और ममता की मिसाल कही जाने वाली निरूपा रॉय। और दोस्तों, अब जिक्र उस चीज का जिसके बिना फिल्में अधूरी लगती हैं, यानी संगीत। फिल्म के संगीतकार थे मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनके संगीत ने इस फिल्म को और भी यादगार बना दिया। तो क्यों ना शुरुआत की जाए फिल्म के एक बेहद प्यारे से गीत से, मोहब्बत की खुशबू से ये भरा नगमा जिसे सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

0: बात है दोस्तों, पुराने गीतों की मिठास ही कुछ और होती है और इन गीतों का आनंद आप सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल पर ही ले सकते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से। अब बात करते हैं फिल्म अनजाना की कहानी के बारे में। कहानी है एक सीधे साधे नेक दिल नौजवान की, जिसका किरदार निभाया है राजेंद्र कुमार ने। उनका अंदाज हमेशा की तरह सादगी और भावनाओं से भरा हुआ है। राजेंद्र कुमार उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिनकी फिल्मों को जुबली हिट कहा जाता था, क्योंकि उनकी फिल्में लंबे समय तक सिनेमाघरों में चलती थी। फिल्म में उनकी मुलाकात होती है खूबसूरत और चंचल लड़की से, यानी बबीता से। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं, बातचीत होती है और कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है इसका एहसास उन्हें भी नहीं होता। लेकिन प्यार की राह इतनी आसान कहाँ होती है। कहानी में प्रवेश होता है लालच, गलतफहमियां और साजिशों का, और यहीं से फिल्म में आता है बड़ा मोड़। लेकिन कहानी आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

कौन है वो कौन है जो आपको 1:10 पर फिल्मी कहानी के साथ साथ गाने सुनवाता है, बोलो बोलो। जी हाँ, वो है सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल। तो कहानी को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे तो वही से
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक ही फिल्म से प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं साल 1969 की फिल्म अनजाना की और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रोग्राम एक ही फिल्म से फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं कहानी में आता है एक बड़ा मोड़ और इस मोड़ को और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं हिंदी फिल्मों के मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा उनकी मुस्कुराहट में भी एक चालाकी दिखाई देती थी और फिल्म अनजाना में भी उनका किरदार कहानी में उलझने पैदा करता है और दोस्तों फिल्म में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है प्राण साहब अब अगर प्राण किसी फिल्म में हो तो समझ जाइए कि अभिनय अपने उच्च स्तर पर होगा कभी खलनायक कभी चरित्र अभिनेता हर भूमिका में जान डाल देने वाले प्राण ने फिल्म अनजाना में भी अपने अभिनय का शानदार रंग दिखाया है तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का अगला बेहद प्यारा सा गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याण

इस खूबसूरत से गीत के बाद दोस्तों को बेसब्री से इंतजार होगा अपने मेल्स का, जो हम मेल शामिल कर लेते हैं। दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। जो श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो कृपया हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है ipradiodelhi@gmail.com। तो ये पत्र हमें मिला है, ये ईमेल हमें मिला है। प्रिय प्रसारक जी, नंदा जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। फिल्म अनजाना जिसमें राजेंद्र कुमार बबीता निरुपा रॉय की लाजवाब जोड़ी है, बिल्कुल सही आपने लिखा। ये पत्र, ये मेल हमें मिला है वीरमगाम जंक्शन अजीत भवसार, प्रमिला भवसार, भावेश सनी, जैमिन कुमार भवसार जी ने हमें ये मेल भेजा है। अगला मेल हम शामिल कर लेते हैं। ये मेल हमें भेजा है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ ने हमें ये मेल भेजा है। राजेंद्र कुमार बबीता अभिनीत 1969 की फिल्म अनजाना एक बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा है, बिल्कुल आपने सही कहा। और मेल भेजने के लिए हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेल के साथ आपने इस फिल्म की कहानी भी हमें लिखकर भेजी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल हम शामिल कर लेते हैं आर कुमार जी का। इन्होंने आर कुमार जी ने ये भेजा है हमें मेल वडिंग खेड़ा पंजाब से, और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है और लिखा है कि प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। अगला मेल हम शामिल करते हैं सुरेश नारंग जी का। ये मेल हमें भेज रहे हैं सहारनपुर चंदर नगर से। इनके साथ हैं आशु नारंग सोनाली। इन्होंने कहा है कि कोई फिल्म का गीत सुना दें। ये कोई भी फिल्म का गीत वाला प्रोग्राम नहीं है, ये है एक ही फिल्म से, और आप फिल्म अनजाना की कहानी के साथ साथ उसी फिल्म के गीत सुन रहे हैं, और कृपया हमें बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो और भी मेल शामिल करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने जाना कि प्यार की राह में गलतफहमियां और मुश्किलें दस्तक दे चुकी हैं, और यहां फिल्म में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हिंदी सिनेमा की मां कही जाने वाली निरूपा रॉय। फिल्म अनजाना में

अभिनय कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी कहानी की तरह अनजाना भी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई देर से सही सामने जरूर आती है। धीरे धीरे कहानी की सारी उलझने सुलझने लगती हैं, सच सामने आता है, कई गलतफहमियां दूर होती हैं और जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी वो फिर से करीब आने लगते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का आनंद लेने के लिए आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। और फिल्म का संदेश भी बेहद खूबसूरत है कि प्यार और भरोसा अगर सच्चा हो तो हर मुश्किल पार किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी और

के साथ साथ मैं मेल भी शामिल कर रही हूँ। ये मेल हमें मिला है प्रवीण एस जी का, सूर्य नगर गाजियाबाद से इन्होंने भेजा है। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड मूवी सिलेक्शन, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेल हमें आया है सूर्य नगर गाजियाबाद से। अगला मेल मैं शामिल करती हूँ कुलदीप गुप्ता जी का। मैडम जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं भी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत सुंदर प्रस्तुति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप गुप्ता जी आपका। और इन्होंने मेल हमें भेजा है बघोली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, हमें ये मेल मिला है। अगला मेल हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का, इनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, फिल्म अनजाना बेहतरीन जानकारी, धन्यवाद। भोपालगढ़ राजस्थान से इनके महेंद्र छिप्पा और इनके साथ है कमल कपिल छिप्पा जी ने हमें ये मेल भेजा है।

इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम एक ही फिल्म से पसंद आया होगा। अब विदा लेने का समय है, लेकिन अगली बार एक ही फिल्म से मैं फिर मुलाकात होगी हिंदी सिनेमा की एक और यादगार फिल्म के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर, सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल। नमस्कार।

और मेल हम शामिल कर लेते हैं। एक ही फिल्म से प्रोग्राम इनको बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। उम्दा जानकारी मिली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेल हमें मिला है पंजाजी नवकर जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है, नलेश्वर नगर नारवेल महाराष्ट्र से।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और नेपाल के कोह पैमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के दो रोजा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मुत्तहिद अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अपने इस दौरे में वजीर आजम मोदी स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टनसन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदाम और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में तआवुन के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़ीरे आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज्जत माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज कारोबारी रहनुमाओं के एक क्लीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वजीर आजम मोदी के इस दौरे से काफी जोश खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नतायज से बहुत पुरउम्मीद हैं। स्वीडन के शहर गोथनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वजीर आजम के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हममनसब रॉब जेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तफाकी राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क्लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों उजराए आजम ने मगरबी एशिया की सूरत हाल, खासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुजमिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मसनूई जहानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की मईशत के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और

0: टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: जनाब अमित शाह गुजरात के दो दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के इनोवेशन और इंक्यूबेशन मरकज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मर्दुम शुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दुमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतल्लिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाज रानी की आजादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निजाम के तहफ्फुज़ के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तिसादी और समाजी कौंसिल की खुसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नजदीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले के चंद रोज बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैनुल अक्वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने 300 मुश्तबह केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि एबोला फूट पड़ने का ये मामला COVID-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है। इसके साथ ही उसने बैनुल अक्वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। आप भी टोल फ्री नंबर 1800117800 के जरिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीजें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजवीजें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1922 पर मिस्ड कॉल करके SMS के जरिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीजें सीधे वजीर आजम को भेज सकते हैं। मन की बात के इस नशरिये के लिए तजवीजें इस महीने की 29 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में 1 रुपए का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG 80.09 रुपए की होगी, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में इसकी कीमत 88.70 रुपए होगी। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेपाल के कोहपैमा कामी रीटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साल कोहपैमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रीटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है।

0: कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। गणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रूपये 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रूपये 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रूपये 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: payo bayano moto moto koi hatakrome ane re pashonesh baisu ani kromi noshibo jonu bod jo badi waja tus jo kunu
1: ju tho sahi raja ju che anu maashra ju ani jadidiyat ali ali insan ni rasne kromi fatta misal ke tor par me ja zamane ko te har zarurat paisa ki pura beni manur li paisa alo to sus mehnat ki thi आई पैसा कमाई थे आई पैसा की मूली गया रे आई बोने नो कोता ने छिल खोई हाँ सो जमाने छिल खोई अमीर अमीर का गरीबी पहचान छिल खोई जबेली कैसली कपड़ा हूँ जबरदस्त कपड़ा हूँ तो थू तू परुजी भी एक चीज की अनु बोए खुट खुटू तू हूँ बोए खुटू हूँ बोए हूँ हाँ अमीर का लिया
0: अमीर का लिया
1: ओ असोई लिसा ने मतलब पूरा दुनिया तेजा लमुने रिंगे छुरियो नो कपड़ा गी ओम थे महारानी सु आ लमुनी रिंगी छोरे तो से नहीं लमुने गिनियो नो रही अलग अलग नौकरानी है नाली लमुन टुकुरी गिनियो नो पाशो गणियो तो पाशो चामो तो रिंग थे तो पातो टुकुरी गी मनुर उस गी एलो आ असली रईस अमीरो पहचान केशुन तो कपड़ा नियत ने बेलो कपड़ो कमी असली तो सो जमाने जे जो तो जरूरत गा असली केशुन तो हर चीज खुद अकी प्रयोन आ जेलो तो से सजा करो मिथ्यो नो मशहूर गा असली अच्छा साधु तो एक कल्चर एक बात जो को तासुई ली नौकरी भी ली जाकुली पैसा आलो या से जो अलावा अलग अलग किस्म किस्म खिले खाते मिसाल के तौर पर कोते कोटी खाते हल्का फेजर कोटी खाते तो अमूरी अमूरी भारी सुरसो खिले कोई सुबह नहीं हल्का कोट एक्सेस जो गगारम मैनो मु तो मनूर एक तो कोट हल्का आगा भी लो गिणियों का आसान भी ली बे के केवी तो सो बैठी का बैठी लो मु तो सोने बोनी तथी रिंगी अमूरी छिले कोई सुबनी मु तो से बोई तो जाको जा प्रफर थी जो एक तो असनी अनु मुआशरे जा जो भाई मॉडिफाई थे उनने बिलेस असनो में जो को कल्चर बुड़ो फात थी असोई जा मैं जा असोई ली तीरी प्राइन नारे या दानो या जो त्रकुम थे ने से प्राइन नाला असने जाक्सु बांस उड़ा की प्राइन नाले बांस तो असोई ली ने आसिलो असनी आम डाकेगी ब्यायो डाकी की गुल की प्राय नाले शबो की थे या माया रोशिंग की प्राय नाले तो सो सिस्टम असो या नए तक होते आए बुढ़िए बीस बीस पच्चीस पच्चीस हजार दे मूली गिन अगर असो ये सादे मॉडिफाई थे असनो दिमाग इस्तेमाल थे आलस तो असनो अनु यक सुधारी ने यक सुमूली ये हारें बिली मगर असो ली सो जहन नुश से सलाहियत दरम असो ली फाल नुश ऐसी जमी पातो रे हाँ असो ये असनो कल्चर फत थी असने प्रायनिक हतक्रो मिफत थी से या नुकसान गलाई बिली तो आनी बुढ़ी जोग बिली जो दारनियो हवा वती दारनियो सामान व तो मेहनत ने थे तो पैंसो रे मूल यूनियनिक बिली चे तो कोत पाठक लाश तुक छोरे पाठक काटे अचाक मेहनत कोई सु थी मेहनत बगैर ही पैसा देता तो मूल यूनियन बिली ले जो नहीं उम्मीद बिली से जानू कल्चर नु शू आलो
0: अच्छा जो सागर साहब बहुत मिस्टर राजा मगर अनु कल्चर अश बेसु टकेस तो अनु कल्चर बेशक असो जो नोटो असोली अश नुश असने कोई जवानी हने अश बेसु असने कोई हुमस कोई बोथन या कारगिल बोथन कोने गो बोथन असोली अनु जगह कल्चर एक पशी जीनुश मगम धर्म गा असोर अनु कल्चर रठे छोरी उनो कार्यो अनि हतक्रो मो कोई गे मेजु के अनि चीज असले से बुड़े रठे छोरी उनो कार्यो जो कर जरूरी दस्तो नुश बेसु
1: जी मां अल्लाह जरूरी हिजो मिसाल के तौर पर मैं तरकी याफ्ता मुल्क के अगर असो या टकीस तो सद हर गोरे तरकी के हिंजू हर गोरे फैक्ट्री ही हर गोरे सामान रेने सामान प्राय ना को तो चाइने जे तरकी के ही हर गोरे फैक्ट्री ही यानी मोबाइल फोन है बोनी हर चीज अधिक गोरे गोर प्राय ये ना मु तो असोली सो कल्चर नोट हूँ बे सु असनो दिमाग इस्तेमाल थे ये एक प्रायो नो दाद माली फी प्राय लो सो की बे यहाँ सीन थे फी प्राय लो सो फी जे मोडिफाई एक थ्यास दासो जे सो फी यारे टेरे तुक्षन भी लास दा टेरे तुक्षे तो हो सकता ऐसे वो इन लोको फल भी बिली दा असो या सो कोशिश थी इस निश कोशिश ने थे तो दारिनी हुआ तो माल गी ता तो दारिन जे प्राई माल गी पैसे दियूं असने पैसे बुढ़े सेनो रे दियूं से थी फैतास मु तो अनु कल्चर बचाई थी उनो अनु वारक कल्चर बोनी या पिराव कल्चर बोनी बचाई थी उनो माँ जरूरी ही सख्त जरूरी ही से एक चीज एक बोनी जो कोते बेरोजगारी ही बेरोजगार बालोरे नौकरी ने ले जी क्रोमी ने ले जी कानी पाशे ना मु तो आनी बिल्कुल खत्म बोनो चान सी उम्मीद थी बेरोजगारी बिल्कुल खत्म बोनो उम्मीद थी मिसाल के तौर पर मुझे मिसाल एक दिन जो मैं जमाने अनु कमाई क्यों नो

0: या नौकरी खेनो रिवाज ने आसली तो जग सुजुक थे थे नाले जग सुजे नने गोड़ जा लाख छोरे नाले तीरिस छोरे नाले दो ने छोरे नाले या लाश दू दो ने दू किरण नाले आई की आवेलो खर्चा खजेली आई लाश का दो ने किरणी तो आई की काजे का थे नाले आई की काजे थे तो आई की हाजर का बोझे नाले तो सैनी सैनी हाजते जरूरतें बुढ़ी पूरा भी नाली तो एक तो को तासनी जुग भी नहीं जो जरूरतें का सुन जाए बस केरियांस इंसानी कचाक तमन्ना थुशी ली ऐचाक इंसान रे प्रॉब्लम गए नहीं थी दुख गम गए नहीं थी मुँह तो सो इंसान मायूस भी नहीं थी जैसी हाजत पूरा ने वो तमन्ना पूरा ने सो मिरी जूँ मुँह तो तमन्ना कचाक थुशी ली असुन जो को तो फैशन थी मैं जो जमाने सुमो झलाक थे तो खारी बोराक तनी थे बेना ले आएंगी गा सनो देश खा जेलो खुश भी ना ले हाज चुके तो खिम बेना ले को तो अफसूस नहीं असुन हाई यानी ने बिली हाई यानी सर पेनलिंग थो ना सिले खारी काली आज नहीं असिले सोफे आज नहीं असिले असुन या दारी ने जकली प्रे थे असुनो कल्चर फट चुने जबी तावा भी ना से सानु कल्चर दोबारा आ जोनो सख्त जरूरत था नहीं
1: वो जो सागर साहब मुझे मिस्टर रजीगा सागर साहब मसू खोजन असुन ये अगर रेसो बारर पाश बानो बारर के जस पास एक मुरकल थे गेस तो बोधे मिस्ट भी अजु को अनु प्रोग्राम में जा तो कोई पाश बान है नहीं बेसो अश पशन उसके रद गए असंज मिलावट ठिकानस जैसे कि रबा टीवी बड़ी रे बाइग शाह सो असनो डेमर कचा नुकसान थे बुजो
0: जो सही राजा जू कोते में जे जमाने के बान थे नाले जू पार खले नाले बान थे नाले तो में जे जमाने अनि पार रे कनी सरकारी पाश आशी पाश यूरिया थे ने पाश आने दे नाले कोते का गवर्नमेंट ही बेन यानो कच्चा बारिश ये 50 साल के इस्तेमाल थे तटोक हुकूमती रे समुशाली की अनु दीजू अनु मुजिर हूँ थे तो कोते तो दोबारा बेन भी तो असनो में जो कोई सिस्टम ही फाला कोते जो भी नहीं जो गवर्नमेंट ही बेन भी तगा भाई अचाक बेकूबी हाँस असो रे समझे ही नहीं गवर्नमेंट ही हालांकि बेन यानो अनि दीजी अनि की कैंसर बेनी अनि की बीमारी एहसास का एक बेने थे गवर्नमेंट ही बेन भी तगा भाई सुशीरा रे गए तो मूल योलो नुस्से पाश नुशू अनि पाश वगैरह में असनो फसल सही भी नहीं थे अचाक भाई बेकूब हाँस गवर्नमेंट आई थी वो या चलो वो बेन ही नहीं तो अनुमा सख्त मुजिर बिल जो तो रबा टू मोश राजा पेस्टिसाइड से ना जो पेस्टिसाइड का मुजिर बिल पेस्टिसाइड की हजार किस्म बीमारियाँ बने बूढ़ो जो बड़ी बीमारी कैंसर हो एक साबा पे कहीं पेस्टिसाइड बिल थे ना कैंसर जो अलावा जो असनी दम्मा है नी सांस बंद बेनी हार्ट अटैक है नी आ बूढ़ यहीं पेस्टिसाइड टू वजह जेने जो और दवाई यून जेने शनीर दवाई यून उसमें सु तो या को तो रजना जो यानी फ्रूट मुवाजू से दवाई भी बढ़िया रहना पचारे ना जबरदस्ती पचारे ना थे ना मुँह तो आ सख्त मुजिर हूँ जो से जो अलावा जो असुरे मिसाल के तौर पर सुरपाए चे सुरपे चे उरे सुरपाए मुलाए उरे सोला उदी जूँ जू ससो अरु हों हमल हों सो का ससरे का खतरा भी नहीं या तो से सो या डिफेक्टिव जेनु जू हाथ एक पाग अठीक नुशो जेनु सो या सो मिरी जेनु मुँह तो से का खतरा ही जू या से आ बीमारी रेगा भी नहीं या जीली तो बीमारी मिसाल सिकिनो बीमारी बने जो बुखार खजी ठूके खजी तो सेगा बेनी से जो अलावा असने इंसान जो अलावा पिरानो रे मुत जानवर सो नुकसान है मसलन आओ रबाट भी हाँ कोई अपाश भी हाँ वही सीनियो जगह तो छे में मिलियन खतरा ही सीनियो या चाय अगर आओ ऊँची खे जो पैसे से मिलियन खतरा ही या ट्रेक क्रीन ना जो खारी असनी जमीन ऐसे फायदा मंद है ना से सो जमीन फर्टाइल थे ना जमीन से सो चेंज थे ना सारे फसल लाओ है से क्रीम बोले सो पास हुई तभी सो मारो नोस्त असनी जमीन ये जो फसल भी मुँह तो सख्त नुकसान ही जो अनु रबाट भी पेस्टिसाइड वाला खसूसा नानी यूरिया किस्म पाश तो से ऑर्गेनिक फार्मिंग माँ जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग एक काल दो काल असुने फसल सही बो के तो असने ठेठी असने युते यहीं आदत बो हैं पाश दे मुँह तो एक एक दो साल बुझूँ तो ता तो बड़ा रे रेसनी पहली हालत ही होनी है मुँह तो से भाई असनी सेहतुर का फायदा मंद बोनी
1: और जो सागर साहब भैंसू मेजू के दलील कोंडे कोते के बैंक यकीन बुनुष की मेजू के जारे खोर स्थान ले बेसो जोर री खाना रे गेस तो कहने की वजन ले स्थान ले बेसो जोर री खाना रे गेस तो अश पोड़ा थी की वजन स्थान ले से दलील जो अश गबे रील बुनुष की आते तो बोने बेन मिली थे लेकिन सो जमानो गिजा अगर जक सो आता हो गिजा खेना ले तो ऑर्गेनिक अचाक फूड खेना ले तो शायद अचाक पॉसिबल बे बिली मुस गुनो मुस

0: तो ऑर्गेनिक फूडो तो बोदे जरूरी हनी असनो डिमारे कोई भाई हनी रे जेगे मिलावट नु शो बोनो आजी असनो डिमारे।
1: जी जी बिल्कुल
0: अच्छा मैं जो कि अनि ले छे हनी जो रेस जगह कोते अनि ले छे नि रेस जो फरक एक दस्तु जो जैसे पाशबान है नि मैं जो के जक सु कोई 30 दोन की थे ना ले कोते जैसे बेसु बड़ा पशन उसके मशीन है जे रेस जगह जो फरक एक दस्तु तुस
1: जो सही राजा जू मैं जा जमाने जो दोनों जबान थे नाले जू हल असिलो नाल असिलो सादे फाल ये नाले खरी थोमा थे नाले आ बुड्ढा रिगोर प्राय नाले से फैक्ट्री कैसे ली समझो तो हालो अलग अलग चीज प्राय नाले अच्छा जोई आ रहे नाले तो को तो सादे काफ़ी चेंजिंग आली हूँ यानी जदीद तरज को तो ट्रैक्टर आली ट्रैक्टर हुई तो मैं जब ट्रे सूरी बेने सात सूरी बेने बांध को तो 2 घंटे 3 घंटे ट्रैक्टर सु छम थे नहीं खत्म थे नहीं या अई हिसाबे भी सुमे जे खाली फारो नालिस यू तीर सु जे खाली फारो नालिस लाओ शो नालिस हारो शे नाले या लागिने नाले तो जक सु जक नाले जो लाओ शे तो कम अस कम खाली की ससत आंस चक बे नाले हालत खराब बिली अरो उदू का चाक बुझे लो सस नाले ग्रुप गाड़ो बुझो न बे बिली मु तो से बुड़ी का को तो खुदाई रहम था जो थ्रेशर फाली थ्रेशर सुसो सच छको क्रम घंटे दूर थे घंटे फेवर थे नहीं खत्म थे नहीं मु तो आने तो मुस्तु गुने में जो आने सही भी नहीं आने ठीक भी लिखे तो इंसानी तरक्की था उठाऊ आज चीज एडाप्ट क्यों ना जो ट्रैक्टर जब कोते का ट्रैक सुसे ना ट्रैक्टर की बात तो ठेस खराब मु खराब भी नहीं के छु तो रे जदीद किस्म टेक्नोलॉजी भी रे या इस्तेमाल थियो ना जो रे से इस्तेमाल थे था तो रे सो फायदा गिनो ना जो अलबत्त से मुसु सही दस्तु मुस आ चीज ही को तो से युग भी लीजिए असनी मेहनत काम मिली या असने मैं जा जमाने जक ला आज नाले मजदूरी ला आज नाले सेगा कम मिली को तो 6 ट्रिलियनों या 8 ट्रिलियनों मशीने खाती से सेगा इंसानी मेहनत कम मिली यानी कम वक़्त जब क्रम लाओ दुली लो से जो आगे मतलब एक चीज एक किस्म को फायदा साइंस को फायदे भी लाई बुढ़ी तो मु तो आ बुढ़ी एडाप्ट हो आज हूँ हाँ एक नुकसान एक भी लिहास हो कि आम जा कोरे क्रम ले जो मुश्किल मिली को तो मशीन गेहूँ तो क्रम ले जी बाकी हाथ गिले ठीक थे नो या मैं जब मजदूरी वजन नाले से नो क्रम एक ले जा नाले मुँह तो इंसानी मेहनत कम मिली भाया मजदूरी कम मिली तो आ नुकसान मिली रसो मुँह तो मी हिसाब जो तो आ बुढ़ी तो मैं सो इस्तेमाल थे ना जो हूँ हाँ अलबत्त एक साइड गया और रवा टिखा तो साइन से दया पार रखते एक आए बुढ़ी जो इस्तेमाल थे जो गुरेज थे ना जो हूँ असनी लोकल पास दिया या सरकारी ऑर्गेनिक पाश आ रॉक से मूली गिनी से ट्रेट उड़िए तो से फायदेमंद भी
0: एक आखिरी खोज निक मुस्तुरे अनित हिमजू सागर सब कोई असने स्कूल ए दश गिनने के बाल मुला यहाँ या कोई असने गाँव जे निक्रो में हाथ क्रो मुझे मिशार बहनिक मुला है नहीं जेनो रे जे सो तालीम दियोनो रे सो दश दियोनो जेनो रे जे सुचरियो नो कार्यो जोक जोक एकदम हुकूमत से गिणियो ना जो साथ साथ निसो जानकारी हनु मनुर उसके गिणियो ना जो
1: जो जो बिल्कुल कानून का क्रम मुनि जो अनेक किस्म क्रम ही खुसूसन कल्चरो क्रमी हुकूमती सरपरस्ती ने भी लगी हुकूमती और हाथ शिशा या नशा तो की अनेक कामयाब बेन नश के चीज तो कोत से हाथ क्रम में जो की अहमियत नशा थी कोत हाथ क्रम की हाथ की बुए पायो तो बुएन बुनियान एक बुएन तसे मार्केटे वाले इनसे क्रिणे इनसे मूली गिणे वो तो अचाक लंबा चौड़ा प्रोसेस हूँ जो से अगर गवर्नमेंट ही हेल्प था रेनो रे पैसे ट्रेक दाओ तो या रेनो ही हौसला अफजाई था या मुले पो पोशाशा एक थे तो अगर रे थे से गवर्नमेंट ही रेनो जो प्राई बुरी गवर्नमेंट ही मूली गिणे हूँ तो से जो रेनो रे हौसला अफजाई का भी तो अनु कल्चर जिंदा का भी तो को तो हुकूमत सुगा एकदम थ्यू है नहीं सेले फेलेप ग्रुपी प्राये से सो आग किस्म चीज थे ना वो तो से अगर गवर्नमेंट ही अगर सही थे इंटरेस्ट दाओ तो अनि इंडस्ट्री अनि असनी लोकल इंडस्ट्री ही जो अनि बड़ा जिंदा भई दोबारा जिंदा भई तो से जो अलावा असने अनि दस्टेनिक दस्टेनिक जक अगर दर्श हेंग जक एलुम हेंग जक अगर मुशो आले सेनु जसु चेरी सेनो गवर्नमेंट ही पैसे ट्रेक दे सेनो की उस्ताद प्राये तत्व अनि नोट एक चीज दोबारा ऐजाद था तो अनि सो लाए फायदा भी जू तो मैं जब जमानो दली लिख समझो मुस्तुरे मैं जब जमाने यूश अनु शो यूश मैं सो लिखे ने यूश अनु अनि ये लाए प्राय जलो थी अनि जे सो काना थे प्राय नाले से कोते जे रेगा एलुमनुश तो परा ले लाके जो जांच करे दा तो करे ए ली थी आओ प्रायोनो से ये ले आ रहे से जो सच छक बलोर ट्रेनिंग दे रही अनु यूश प्रायोनो

करीब 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल एक्टिव जोन AIR और DD फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। सपहर के 3:05 हुआ चाहती हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो दिन के दौरे पर आज से पहर गोथनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को किलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मस्तरम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने अपनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी फैलने को बैन अल-अक़वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। और नेपाल के कोहे पेमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोजा दौरे पर गोथनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात UAE और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। अपने इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टर्सन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदाम और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में तआवुन के बारे में भी तबादले ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़ीर-ए-आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज्जत माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज कारोबारी रहनुमाओं के एक क़िलीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे से काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नतीजे से बहुत पुरउम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को किलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर किलीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी एशिया की सूरतहाल, खासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निजाम और तिजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुजमिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाजरानी की आजादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निजाम के तहफ्फुज के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तिसादी और समाजी काउंसिल की खुसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नजदीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले के चंद रोज बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तशवीश की हामिल हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम गेब्रियसिस ने 300 मुश्तबा केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि इबोला फूट पड़ने का यह मामला COVID-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है। इसके साथ ही उसने बैन अल-अक़वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन

से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है। इसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, उसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। मर्दुमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मकानों की फहरिस्त

0: इलाकों में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इसमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतालिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो प्राइवेट मोटर गाड़ियों के मुकाबले मेट्रो के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए इजाफी ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के मुताबिक मौजूदा हालात में तवानाई के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने, इक्तिसादी इस्तेहकाम और माहौलियाती पायदार निजाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अहम रोल को महलूज खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने बताया कि कल से हर पीर के रोज 24 इजाफी ट्रेन ट्रिप्स का एहतमाम किया जाएगा और इसके लिए 6 इजाफी रेलगाड़ियां लगाई जाएंगी। कारपोरेशन के मुताबिक दीगर दिनों में भी इजाफी खिदमत शुरू की जाएंगी जिसका इन्हिसार मांग पर होगा। कीमती धातों पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने के पानी चली चांदी और प्लैटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आजादी से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातों पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत के लाइसेंस की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। मालूम हुआ है कि तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन नंबर 12431 के B1 रेल डब्बे में आग लग गई थी। ये वाकया आज सुबह सवेरे 5:20 के आसपास कोटा डिवीजन में लूनी रिछा और विक्रमगढ़ एलोट स्टेशन के दरमियान पेश आया। रतलाम के रेलवे डिवीजन के तर्जुमान मुकेश कुमार ने बताया कि इस वाकये में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला, माहे और लक्षद्वीप में भी तेज बारिश होने की पेशगोई की है। नेपाल के कोई पीमा कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साल कोई पीमा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रीता ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच अब से थोड़ी देर बाद 3:30 शुरू होगा। इधर शाम 7:30 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज से पहले गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को किलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। और भारत ने अब नए हुर्मुज में कमर्शियल बैरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम हाजिर खिदमत है आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में चंद

0: परेशान रहते
1: यह फिल्म बाबर की कव्वाली आशिफ भोसले सुदामा लोत्रा मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में कलाम साहिल लुधियानवी का मौसीकी रोशन की।

0: जनाब मेरे बात तो सुनिए,
1: मैं तुम्हें और तुम्हारे मालिक दोनों को देख लूंगा।
0: वो आपकी मेहमान है, शायद मेरी मालकिन की हम शक्ल है।
1: नामुमकिन है ये, नामुमकिन।
0: मैंने
1: बाती मत करो।
0: मैं सच कह रहा हूँ बहराम साहब, ये सब गलती ऊपर वाले की है कि उसने एक औरत को दूसरे जैसा क्यों बनाया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ।
1: अब ये तो नहीं कहोगे कि मेरे मकान में तुम्हारी माल किन थी?
0: जी हाँ, वो वही थी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं थी। जो मैंने देखा वो नहीं देखा था।
1: दोस्तों, अभी भी कोई शक है? कोई शक है तो मेरे घर जाकर देखाओ, जाओ।
0: जी जी, ये ठीक रहेगा, जाता हूँ।
1: बुकरा?
0: जी जी जी हुजूर।
2: सुनो, सलमा से जाकर कहो कि रुस्तम के जाते ही भागकर कप्तान के घर में पहुंच जाए।
0: जी जी बेहतर बेहतर। सरकार? हाँ सरकार, वो मेरी मालकिन जैसी आपकी मेहमान आप ही के घर में है।
1: और अब जाओ रुस्तम, और जाकर अपने घर में अपनी मालकिन को देख कर आओ, जाओ।
0: जी ये भी ठीक रहेगा। जी दादा, मैं क्या है हुजूर, क्या है
1: क्या
0: है? जी
1: तुम भी यही थे?
3: जिया, छुप छुप कर सूरत हाल का लुत्फ ले रहा था। मैंने अपनी पूरी उम्र रुस्तम जितना बौखलाया इंसान नहीं देखा।
0: आप लोग ठीक कह रहे थे, मेरी आंखें नहीं है, मेरा दिमाग नहीं है, मैं पागल हूँ, बिल्कुल दीवाना। क्योंकि आपकी मेहमान मेरे घर में है, मेरी मालकिन वहाँ उस अजनबी के साथ है। माफ कीजिएगा, जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ है, और मुझे कान कोठरी में होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: 100 जूते, 1000 जूते, 1,00,000 जूते मारिए मुझे, मैं गधा हूँ।
4: गधों की बेइज्जती मत करो रुस्तम।
1: चलो चलो चलो चलो।

0: मुझे तुम्हारे मालिक से बात करनी पड़ेगी।
1: लेकिन हुजूर, मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता। मुझे माफ कर दीजिए, खुदा आपको इस रहम दिली का अजर देगा।
2: जी हुजूर, आप जैसे नेक इंसान को ये नेकी करनी ही चाहिए।
0: जी ठीक है, सुनो जी, ये गुलाम को अपनी आंखें, हाथ और सामान अपने काबू में रखनी चाहिए।
2: जी,
0: जाओ, मैंने माफ किया तुम्हें।
2: जी, जी,
0: लेकिन आइंदा ऐसी गलती सरजद नहीं होनी चाहिए, समझे?
2: जी, जी, जाता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी सरकार, खुदा हाफिज सरकार, खुदा आपको सलामत रखे।

0: मुझे तो यकीन नहीं होता कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मुझे लगता है बहराम साहब मालिक के आते ही सारी रुदाद गोश गुजार कर देंगे।
1: बेटे, गलती की है तो सजा भी मिल सकती है और शायद बच भी सकते हो।
0: बुकरात यही धड़का तो मा...

0: साहब। बहराम साहब
1: जी,
0: कैसा लगा आप लोगों को मेरा मंसूबा?
1: भाई इससे बेहतर मंसूबा कोई हो ही नहीं सकता। देखो भाई, हम कामयाब रहे तो अरमान तुम्हें तुम्हारी सलमा मिल जाएगी और उस कप्तान को अपने किए की सजा।
0: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे मेहरबान बुजुर्ग को मेरी वजह से इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है।
2: अरमान, अगर आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो आपको सच्चा आशिक नहीं कहा जा सकता।
0: लेकिन चचा भाई, हमको मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, वो भी इस उम्र में।
1: अरमान मियां, देखिए क्या मतलब है अभी तुम्हारा? कोई कि मैं कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ? मेरी उम्र ही क्या है, 54 साल।
0: लेकिन मेरे किसी हम उम्र साथी की तरह आपने इस मामले में मेरा साथ दिया है।
1: छोड़ो ये सब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई सलमा को कप्तान के चुंगल से निकाल कर तुम वापस एथेंस ले जाओ।
0: और उसका मंसूबा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
2: लाइए, मुझे अपनी अंगूठी दीजिए।
1: क्यों?
0: अरे दीजिए तो।
1: अब ठीक है, ये लो।
0: ये अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए।
2: मेरे नए मालिक यानी कप्तान का वहम है
0: कि इस जहान की हर खातून उस पर फिदा है।
1: ये बीमारी तो है उसे।
0: क्या आप किसी ऐसी औरत को तलाश कर सकते हैं जो देखने में हसीन हो, चालाक और तेज़तर्रार हो और थोड़ा बहुत हंसी मजाक का भी हुनर रखती हो?
1: भाई कम उम्र हो या पुख्ता?
0: अजी कोई रस भरा चलता पोसा।
1: एक है मेरी नजर में, लेकिन उसे करोगे क्या?
2: भाई मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसी ही औरत को घर लाए और मशहूर करें कि वो आपकी बीवी है।
1: अब
0: लेकिन उस सबसे क्या होगा?
2: वो अभी मालूम हो जाएगा।
0: लेकिन पहले ये बताइए, क्या उसकी कोई कनीज वगैरह भी?
1: हाँ, है, और वो भी बिल्कुल पटाखा।
0: तो बस अब आपको ये करना है कि उस औरत को बीवी की तरह घर लाइए और उस कनीज को कप्तान तक कासिद के तौर पर भिजवाइए।
3: लेकिन इससे होगा क्या?
0: हाँ, जब कप्तान को एक छोड़ दो हसीनाएं मिलेंगी तो वो बिल्कुल ही पगला जाएगा और सलमा से पीछे छोड़ाना चाहेगा और इस तरह हमारा काम बन जाएगा।
3: वाह वाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा।
2: लेकिन हुजूर ये मत भूलिए कि मैं फिलहाल कप्तान का गुलाम हूँ।
0: अच्छा, मैं छुपते छुपते वापस ठिकाने पर पहुँचता हूँ।
1: ठीक है, ठीक है।

0: में मैं और चाचा बहराम शामिल नहीं।
1: क्या बात करते हैं हुजूर, हमारा मतलब उस कप्तान से था।
2: तो ठीक है गुलाबो, ठीक है। देखो जैसे ही कप्तान घर वापस आएगा तो रात वहाँ से इशारा करेगा और तुम अपने काम पर रवाना हो जाओगी।
0: अच्छा अच्छा, तो ठीक है मैं चलता हूँ।
1: अरे ये कहाँ गए?
2: जाने दो जाने दो, वो जा रहे हैं उससे मिलने जिसको आजाद कराने के लिए सब पापड़ बेले जा रहे हैं।
1: अच्छा।
2: यानी सलमा से।
1: समझी, तो ये बात है, वरना कोई मामूली दिल गुर्दे का शख्स हमारी बीवी जी की महफिल से

0: बेहोश।
1: तुम्हारा साथी रुस्तम कहाँ है?
0: हम दोनों तहखाने में कुछ ढूंढने गए थे, वो वही है, सो रहा है, उसकी नाक जाग रही है बस।
1: अरे तुम कहाँ जा रहे हो?
0: मालकिन ने बाजार से फूल मंगवाए हैं, सारे घोड़े कप्तान साहब के साथ गए हैं, पैदल जाना पड़ेगा।
1: रुस्तम सो रहा है, सलमा ने इसे बहाने से बाहर भेजा, इसका मतलब है कि अब वो पुराने मालिक से मिलने जाएगी। अरे बाप रे, ये कप्तान सिकंदर तो वापस आ गया, सलमा तब तक क्या करूं क्या करूं, अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
2: ये सारे घोड़े अस्तबल में ले जाओ। भुगराज, क्या बात है, क्या सोचने लगे तुम?
3: एक मिनट जनाब, आप अभी अंदर मत जाइए।
2: क्यों?
3: क्योंकि अंदर कुछ नहीं मिलेगा।
2: क्या आप बकवास किए जा रहे हो?
3: आप इधर तो आइए, आइए ना, आइए हुजूर, आइए। मुझे आपसे
1: तन्हाई में कुछ कहना है। वो बात यह है कि पड़ोस की एक एक लड़की आपकी तलाश में है।
2: अच्छा, तुम्हें कैसे पता?
1: अजी हुजूर, उसकी निगाह बता रही थी
4: कि वो आपको ढूंढ रही है।
2: वो कैसी थी?
1: बेहद खूबसूरत, बहुत बहुत हसीन।
2: मुझसे क्या चाहती थी वो?
1: हुजूर, ये तो वही बता सकती है।
2: ये तुम इशारे कैसे कर रहे हो? इशारे कर रहे हो?
1: जनाब, मैं तो ये बता रहा था कि वो रही लड़की, वो
2: जी। ये तो सचमुच गजब की है।
1: मैं जाता हूँ हुजूर, क्योंकि वो इधर ही आ रही है।
5: कनीज आदाब बजा लाती है।
2: क्या आप मुझे जानती हैं?
5: आपको कौन नहीं जानता हुजूर? आपके लिए एक पयाम है।
2: कहिए। हम आतनगोश हैं?
5: नहीं, आप ही नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं हुजूर। आप मुझे एक घंटे बाद बगीचे में मिले।
2: एक घंटे बाद?
5: खुदा हाफिज।
1: हुजूर, क्या कह रही थी?
2: अजीब लड़की है, तन्हाई में मिलना चाहती है।
1: दिल की बातें राज की बातें होती है जनाब।
2: लेकिन थी बहुत खूबसूरत।
4: अजी, ये तो उसके पैर की धोवन भी नहीं है।
2: क्या, किसके, क्या कह रहे हो तुम?
4: अरे, ये जिसका पयाम लेकर आई थी। हाँ। वो
2: क्या सच?
1: मेरे लिए तो ये भी ठीक है।
4: लेकिन जनाब, एक

0: आवाज महसूस होना चाहिए कि आपको इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। जनाब, अगर इश्क में कामयाबी चाहते हैं तो यही करना होगा। इससे आतिश इश्क और भड़केगी, भड़कती जाएगी। चलता हूँ।
1: अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो?
0: जी वो घोड़े को पानी देना।
1: अरे भूल जाओ घोड़ों को, तुम मेरे साथ रहो, हमें तुम्हारे मशवरों की जरूरत है।
0: अच्छी अच्छी, जो हुक्म सरकार का।
1: चलो बगीचे में बैठकर सोचते हैं
0: जी
1: कि क्या करना है और कैसे करना है।
0: जी

0: ही रही है। अरे हुजूर, जब दिल की मुराद मिल जाए तो इस वाली को मुझे अता कर दीजिएगा।
1: हुजूर, इस गुलाबों ने आपसे तन्हा मिलने की दरख्वास्त की थी। ये कौन है?
0: ये मेरा राजदार है। फिक्र की कोई बात नहीं।
1: अगर राजदार है तो इससे कहिए कोई राज की बात बताए।
0: ये कौन सी बात है? मैं जानता हूँ कि कोई है जो किसी पर मरता है।
1: ऐसी तो सैकड़ों हैं,
0: लेकिन वो तोहफे नहीं भेजती ना।
1: इसका मतलब है राजदार किस्मत का हाल जानता है।
0: अरे ये तो मैं भी जानता हूँ। कोई है जो छुप छुप के रोता है, आहें भरता है, और मेरे मालिक की एक झलक के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है।
1: जी बिल्कुल सही। मेरी मालकिन की यही हालत है, तुम्हारे मालिक के गम में है।
0: ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं क्या करूं? जवाब नहीं मालिक, यही अंदाज ठीक है।
1: मेरी मालकिन की जिंदगी और मौत आपके हाथ में है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी आरजू लिए वो इस जहां से जाए।
0: क्या है उनकी आरजू?
1: वो आपसे मिलना चाहती है हुजूर, दिल की बात कहना चाहती है, वो आपकी होना चाहती है। आपने मुल्क फतेह किए, शाहों के ताज अपने कदमों में गिराए हैं, क्या आप एक मोहब्बत में मारी औरत को उसकी मोहब्बत नहीं दे सकते?
0: उनसे कहिए कि वो खुद मुझसे मिले, जो कहना हो कहें, तभी मैं कुछ सोच सकता हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए, मेरी मालकिन ने ये अंगूठी अपने प्यार की निशानी के तौर पर भिजवाई है। अब मैं चलूंगी हुजूर।
0: मैं इनको पहुंचा कर आता हुजूर। ठीक है।

0: साथ हो तो उसको फौरन अपने कमरे में पहुंचने को कहो।
1: मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा।
0: ठीक है, शब खैर।
2: शब खैर।
0: हुजूर, बहुत खुश थी। इसकी मालकिन कुंवारी है या शादीशुदा?
1: कुंवारी।
0: दोनों बातें सही हैं हुजूर। क्या मतलब है?
1: हुजूर, इसकी मालकिन फिरदौस अपने पड़ोसी बहराम की नई बीवी है।
0: उस बुढ़े की?
1: जी हाँ, शादी को एक महीना हुआ है और 29 दिनों से वो फिरदौस आपके इश्क में गिरफ्तार है।
0: वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सलमा का क्या करूं?
1: मेरी खबर है हुजूर कि सलमा की बहन अपने एक दोस्त के हमराह यहाँ इस शहर में उसको ढूंढने आई है।
0: अच्छा, सलमा को उसके हवाले कीजिए,
2: दो बिछड़ी बहनें मिल जाएंगी
1: और आपका काम भी बन जाएगा।
0: क्या वो हंसी खुशी

0: हजूर, उसको हीरे जवाहरात तोहफे तहाइफ देकर रुखसत कीजिए, चली जाएगी। फिर आप होंगे और आपकी फिरदौस।
1: और अगर वो नहीं गई तो मैं निकाल बाहर करूंगा।
0: हुजूर,

0: तो इसका मतलब है बुकरार
1: जी
0: कि तुम अपनी कोशिश में कामयाब रहे।
1: जी हाँ, कप्तान ने सलमा के हवाले बहुत से हीरे जवाहरात और कीमती अशिया कर दी है। अब बस कल किसी वक्त आपको एक जहाजी के भेस में उसके घर जाना है ताकि सलमा आपके साथ जा सके।
2: और उसके फौरन बाद मैं कप्तान को मिलने के लिए यहाँ बुला लूंगी। और फिर?
3: और फिर जो कुछ करना है मुझे करना है। मैं बरसों से एक मौके का मुंतजर था। अब तुम जाओ, लेकिन एहतियात से, कोई तुम्हें देख ना ले।
1: आप फिक्र न कीजिए हुजूर, वो चोर रास्ता कब काम आएगा जिससे सलमा इनसे मिलने आती थी।

लाल दरवाजा ख्वाबगाह का है। इधर इधर इधर सीधी

उसको पकड़ कर बाहर लाना, यही सरे बाजार जूते लगाने हैं उसे। भगवान, हमारा चाकू तैयार है।

0: कह रहे तुम लोग? एक कोड़क किस दिन के लिए है?
1: अरे मर गया, मर गया। अरे राम, अरे राम, अरे माफ कर दो मुझे, अरे अरे माफ कर दो मुझे, मेरी जान बख्शो।
2: मैं तुम्हारा गुलाम बन कर रहूंगा। अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मर गया।
0: अगर तुम मेरे गुलाम हो तो मैं बिना कीमत दिए तुम्हें कैसे आजाद कर सकता हूँ? ये तुम लोगों के कोड़े चौर का है।
2: हुजूर, ये तो सचमुच मर गए।
0: तो क्या करूं? इसका कहना है कि ये मेरा गुलाम है, क्या कीमत मिल सकेगी इसकी?
3: इसके लिए 100 धरम से ज्यादा नहीं मिलेंगे।
2: मुझे मंजूर है, रुस्तम को बुलाओ।
0: रुस्तम, रुस्तम,
4: हुजूर जी, हुजूर,
2: घर से 100 धरम ला कर दे दो।
3: और ये तलवार, जूते और चोगा भी यही छोड़ कर जाओ।
5: और मारना है जनाब या बस करें?
0: अब जाने दो। और अगर आप शहर में किसी की भी तरफ आंख उठाकर देख लिया तो मैं इनको रोकूंगा नहीं, समझे?

0: दरहम दे आया हुजूर।
1: मुझे मुझे सहारा दो।
0: हुजूर अब तो वो आधे रास्ते में होगा।
2: और हुजूर वो जो एक आंख का जहाजी था वो काना नहीं था।
1: क्या?
2: मुझे याद आया वो तो जहाजी भी नहीं था। आपके घर से निकलते ही उसने आंख पर बंधी पट्टी फेंक दी थी।
1: क्या?
2: तब मैंने पहचाना वो तो वही था जिसको मैंने सलमा के साथ वहाँ पड़ोस के घर में देखा था।
0: क्या हुआ हुजूर? क्या हुआ? आप तो बेहोश हो गए।

फाइल्स ग्लोरिसस यानी बड़े साहब की तो बात निराली। ये ड्रामा अभी आपने समाप्त फरमाया। हिस्सा लेने वाले फनकारों के नाम मय किरदारों के इस तरह हैं: मुकरात नीरज शर्मा, सलमा सुनीता शाहबादी, कलीम कीमती आनंद, लुकमान तिलक राज, रुस्तम सुनील लोहिया, सिकंदर अशोक मलकानी, बहराम सुरेंद्र सागर, गुलाबो ममता मलकानी, शब्बो फ्लोरा बोस और अरमान एस एम शरीफ, मुआविन दानिश जैदी, हिदायतकार सरफराज अहमद और पेशकश दानिश इकबाल।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटी फेटिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसिकी का आगाज कर रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के नगमे से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, नगमा निगार अंजान मौसिकी कल्याण जी आनंद जी की।

हसीना मान जाएगी फिल्म का ये तो गाना सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और इन्हीं दो आवाज़ों में अगला नगमा फिल्म है आन

बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके फूके फूके रे के पग घुंघरू पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी हाँ।

दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मुत्तहिद अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। वजीर आजम के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क़लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हमनसब रोब चेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क़लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों वज़ीरे आज़म ने मगरबी एशिया की सूरत हाल, खासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई चेन और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुजमरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मसनूई जहानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की मईशत के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है। जनाब अमित शाह गुजरात के दो दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के इनोवेशन और इंक्यूबेशन मरकज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतालिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं जमात के इम्तिहानात में ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम निजाम से जांच के अमल में गैर जानबदारी और शफाफियत में इजाफा हुआ है। आज नई दिल्ली में सीबीएसई की जानिब से 12वीं जमात के नतीज से मुतालिक खदशात के बारे में बात करते हुए स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि नंबर देने के तरीके कार और पास होने के फीसद में मामूली कमी पर तलबा की जानिब से कुछ खदशात जाहिर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तलबा की फलाह बहबूद सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए किसी भी तालिब इल्म को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे उसकी अहलियत से कम नंबर दिए गए हैं। सेक्रेटरी ने वजाहत की कि सीबीएसई ने इस साल ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम नाफिज किया है, जिससे जांच के अमल में ज्यादा शफाफियत और गैर जानबदारी को यकीनी बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो प्राइवेट मोटर गाड़ियों के मुकाबले मेट्रो के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए इजाफी ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के मुताबिक मौजूदा हालात में तवानाई के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने, इक्तिसादी इस्तेहकाम और माहौलियाती पायदार निजाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अहम रोल को मरहूज खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने बताया है कि कल से हर पीर के रोज 24 इजाफी ट्रेन ट्रिप्स का एहतमाम किया जाएगा। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। आप भी टोल फ्री नंबर 1800117800 के जरिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीजें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी ऐप या माइको ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजवीजें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1922 पर मिस्ड कॉल करके SMS के जरिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीजें सीधे वजीर आजम को भेज सकते हैं। मन की बात के इस नशरिए के लिए तजवीजें इस महीने की 29 तारीख तक कबूल की जाएंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अब नए हुर्मुज में कमर्शियल

0: prun diana nyambo ngati pruni programi workspot thamat honendu
1: pruni pya program enta snaben chut bin to yebaba ne shitna medium ekancha sa akashwani kargil kana zalenu workspot baja trukchendu akashwani dehli kana hindi na anglizen khabarun dilebet
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी

0: चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटन के साथ प्रसिद्ध अफ्लाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. He was received at the airport by the Swedish Prime Minister, Ulf Kristersson. During his two-day visit to Sweden, Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart and review the entire gamut of bilateral relations. The two sides are also expected to explore new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also jointly address the European Round Table for Industry, a leading pan-European business forum, along with the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Before departing for Gothenburg, Dutch Prime Minister Rob Jetten personally came to Amsterdam Airport to bid farewell to Prime Minister Modi. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals and other key sectors. Both leaders also expressed deep concern over the situation in West Asia and its implications for global energy supplies and trade networks. Union Home and Cooperation Minister

0: পুত্রচিস বাজানা নামের চিচাইন স্কুত ইয়ান্তি লাখথু দেখা দিউ থার খেল চুগেন মিমাংস গামাস ইউলপা গামাস লাখথুত বেন গেরচেদলা গোয়ার খেউেন মির্চিস নিস্তং ইসুর চাপদুন নাতি মির্চিস নাতি ইয়ার গ্যাস প্রিন্সিপাল ডিস্ট্রিক্ট সেন্সেস অফিসার কার্গিল লাখসে চোখসনা মিমাংসি ফান কেফেয়া
1: দশ লাখ কি লটারি মেরে লিয়ে ওয়াও
2: फर्जी ऑफर से होशियार
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: रंगी बिजनेस उन लस्के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोलन उन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्तंचाइन कस्टमर उन सब पिलेपीस कप्स मांगमो धरने अंतिस नंग या दफ्तर या हटी का युग से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी লোকসো চ্যানেল উনিকা এডভার্টাইজমেন্ট তাঁচাও সামু দোনা রিং ইনসে বুকিং বেফিয়া কল বাজাত 8700014242 কা
5: আপনে বিজনেস কো বড়ানে কে লিয়ে লিজিয়ে আকাশবাণী কা সহযোগ অর দিজিয়ে উসে বুলন্দিও কে পঙ্খ
6: আপকা বিজনেস লোকাল হ্যায় ইয়া রাষ্ট্রীয় আকাশবাণী দেতি হ্যায় উপভোক্তাওঁ তক পৌঁছনে কা হর বিকল্প
5: আর আব তো আপ ঘর দফতর ইয়া দোকান পর ব্যাঠে ব্যাঠে কর সকতে হ্যায় আকাশবাণী কে কিসি ভি কেন্দ্র কে লিয়ে विज्ञापनों की बुकिंग
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
6: 8700014242 सुनो ना
5: हाँ
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ
5: तो रोका किसने है हाँ
6: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं
5: मुझसे
6: तुमसे तो अच्छा बताओ फिर
5: आकाशवाणी है ना मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है
6: पर उससे मेरा क्या फायदा
5: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं
5: बहुत आसान है मैं बताती हूँ नंबर नोट करो 8700014242
6: ओ 8700014242 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर
7: मचाज आकाशवाणी करगिल का नजर बाजार पुर की गजल लेकिन खदमत हिप चुगत नियन मजद

आकाशवाणी करगिल कने सगेत पानीफिया सगेत प्रोग्राम प्रचुपा ना सजाद हुसैन यान सरशी गंतंग यान बोस का तुक छेन्यु नी जोसना यान तमी मास गामा जुन सलाम बु फ्रद बचन सोशी कासा ले प्रोग्राम यान कानून जग बिंग्रेसिका नते सगेत प्रोग्राम मुनियानुक सोमास पेरा रे खुरे योंग मत दिरिन जग पियाना यान सोमास पेरे खुरे योंग सेत दिरी प्रोग्राम पियानुक सबतसनला वर्ल्ड हाइपर टेंशन डेज कोरलस पेरा रिक देजुकना टीसी क्लिप चुगेत यान तासुपेक कासंगन कानूनता वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे जरना दी जापो गोजुक शाखा नेंचोक यां दियो गोजुक बसखा नेंचोक द वर्ल्ड हाइपर टेंशन लीक जरबी छोपाज दी जाप प्यानो मीमांग सुनला हाइपर टेंशन स्कोरला हागो तांग बच्चो यंग लो बिंग्रेसिका मेल जे चुबदुल्ला वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे जरे दियो मल्ला क्यों मच्चो यंग हाइपर टेंशन जरना दी तोंताकपो दु इनसुकी गा मिमांगशिगा ब्लड प्रेशर मन मांगमो थालेछना दो हाइपर टेंशन जेचाजिनजु यंग दो मेनमा हाइपर टेंशन जेरना ब्लड प्रेशर मांगमो छाचाव या मीगा हुनमेल्ला यंग मथोंचाव हार्ट अटैक योंचाव किडनी यांगते खालमा जेरतांग ओदवा फ्रोमाचिक जेरमो योंचाव डेमेंशिया जरबी ना तुन योंचाव दुन गामा हाइपर टेंशन ही स्ट्रोल सोंसे इंचो यंग गासुची का हाइपर टेंशन जरखनी दी नत पुका तो पागजी छाना क्वा नित दू छे स्ट्रोल पु नित निंजे तांचास छा खिमो जाचास दोना रगुल जित पु बॉडी वेट पु मन मांगमो छाना सिगरेट ना तंबाकू मांगमो थूना

0: पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा दे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देनी कमी तो
1: अर्बन जगह ने ना
0: अर्बन
1: जो
0: ओ अर्बन चार जगह ना जेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पो का अर्बन एरिया नो गार मतां सिटीज ना थो ना दानो वेल डेवलप मतां पब्लिक ट्रांसपोर्ट
1: बिल्कुल
0: हो
1: हो घर चार सम ना कतु गाड़ी थो बैठा जो
0: पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो
1: बिल्कुल
0: अदु वातेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाते बड़े भी वाते ठीक बेफेला एक तो मतां आ जानो नी सवा एफोर्डेबल प्राइस हो मशीन को या को एक
1: किरिया उमाना नॉर्मल छ
0: ओ
1: उम्र को सजो
0: किराया नॉर्मल छ उम्र को सिया को ए चीज बच्चों दी जगह जगह बस स्टॉप जा पर गोस या
1: बिल्कुल
0: कौन ट्रैफिक डुल कौन ट्रैफिक की कंजेशन चाहना का तो कौन ये अलग रूट ची या कौन प्रायोरिटी था मरो से
1: बिल्कुल
0: पब्लिक
1: बिल्कुल
0: ट्रांसपोर्ट उन
1: कस
0: चाहना दूसरा मता दिया नुक वेस्ट मैनेजमेंट पो मता योचिन जैसे कि
1: चेम्से
0: केम से योचिन मता जैसे कि दी सीवेज ट्रीटमेंट योचिन मती जैसे कि दरे
1: बिल्कुल
0: मती दे शुरू चुके हैं नुक मता दरे ड्रेनेज बसे मते चो दे दे गंदगी हम आते अच्छे
1: शुका शिंदो
0: लेकिन अदु मते अनट्रीटेड मते आदम फुइन अदे
1: कोई नहीं
0: जानो
1: था जो छुके आनो
0: अनट्रीटेड दे अच्छे आने दे वजह का जो दियो पोल्यूशन सुमित पोल्यूशन छ छ
1: चेचिन
0: जाने दियो
1: कस
0: मता लॉन्ग टर्म में दियो मति सुमित पोल्यूशन छ छ मतलब अनकंट्रोल छ छ
1: नुकसान है जो
0: तो दियो मता ट्रीटमेंट बारो सिन दियो सीवेज पो मते ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट आनो मते सीवेज इन जवना आदान होना दे जहरीला चीज पोन दे पोल्यूट से चीज मते दे न बचिन अदुना पिंचिन
1: पिंचा
0: आदे
1: कस
0: छुयन छुके न दिस ने छुके छुयन यम से छुयन छा बस न आदे जादो देन अ ट्रीटमेंट बचिन जैसे कि आदे न अलग अलग प्रोसेस हो जैसे कि एडवर्ड जलिन नो आती दान स्लज प्रोसेस न
1: स्लैश
0: या आदे न
1: प्रोसेस
0: मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स यूज दे आर दे ले आते इस दरे से एडवांस यू थिंक्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस
1: कस
0: या स्लज प्रोसेस में आते मिसाल के तो आदान सबसे पहला आते स्लज प्रोसेस में आदान दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो आते ब्रेक डाउन बचिन सो ऑर्गेनिक
1: बिल्कुल
0: मैटर आदान मिसाल आते सिंपल वर्ड या जन आदान दे जहरीला चीज में आते पिंचिन सो आदान खत्म
1: बिल्कुल
0: बचिन सो
1: कस
0: देनो चाहे फिजिकल यो नगा तो दुन टेंशन सो केमिकल यो देन जहरीला चीज यो नया बायोलॉजिकल यो नगा तो आदान आते पिंचिन सो देखना आते आदान छु आदान छ छु चिन सो
1: कस
0: चाना ड्यून मता एक
1: छू सही
0: मेन
1: बस
0: मेन
1: है छाचे ग्रो साजो दे मिसल छुके हैं
0: दे
1: फुटा मना
0: सही सही पोल्यूशन
1: क्यों
0: से
1: होते
0: तो
1: हैं ना
0: मता
1: हाँ
0: लॉन्ग टर्म में
1: नुकसान
0: जी
1: कस
0: असर पर मना जमेत देना तो चीन मता
1: बख्शीस सही मो
0: पोल्यूशन
1: सर छाना दरें गतस नाती करगिल स्पिरा ताना जो अर्बन एरिया सुने स्पिरा ताना दरे दी वॉशरूमिंग अता मसला दुखा जो छाना दरे सेनेटरी कॉम्प्लेक्स दरे वॉशरूम सवाया ओदा तोसिंग अती करगिल टाउन यानो या करगिल टाउन आसपास यानो यारा दी वॉशरूम योचस्पो या ngata इंसान ला चाम से दु ngata जरूरी छेसे और ngati दिया नो चाम से दरा यंग वॉशरूम सोखला दी सोसा जो सेनेट्री कॉम्प्लेक्स डेवलप बार गोशा तो देश कर ला चेयरस मल चाकस
0: कस वॉशरूम ना काफी जरूरी काफी अति दरे तरह से दुनिया नु अति करील बाजार सेट नु काफी वॉशरूम वॉशरूम काफी यो
1: चोसियत
0: चोसियत काफी
1: कस
0: यो लेकिन इस ध्यान हो यंग को यंग जगह चिकनी शेर को धन्य
1: चुना
0: यला छु
1: ठीक तो भाजो कस
0: लेकिन जैसे कि बारूद सुखसनला दून ला जैसे कि
1: ठीक
0: अति
1: वैसे
0: मैं
1: फंक्शनल में दुख दे
0: छाना बाकी जगह अति जैसे कि टूरिस्ट प्लेस आ का अति दैट्स फॉर द पब्लिक दैट्स ऑल ए चीज
1: वॉशरूम
0: टॉयलेट वॉशरूम सब
1: कस
0: छाना को दून नमन अरियला जुमा
1: बिल्कुल बिल्कुल कसा छाना दरे अर्बन डेवलपमेंट इंगते स्पेरा ताजो यहाँ यंग अर्बन डेवलपमेंट आने दरे मिसाल के तौर पर नाता दी स्ट्रीट लाइट हो था जो छाना दरे नाती दीजर इन की अर्बन एरिया जाशिक एक्सटेंड बसे नाता करगिली दी थांग सापे खिरी इंसु पश्कुम सर लाए दी सर ला तकरीबन तेचुमिक पार बसे तकरीबन दी छुतु घाट से होटल पर सापे खोंस खेस जरे जैस छाना दुई नानो दरे सोमा अर्बन एरिया अंडर आयों खानी चीज सुनानो गत ऑक्सीजन उन्होंने सहूलियत का तो फुटपाथ जरे स्ट्रीट लाइट जरे हजो उधुन चोचाओ चम से खर्चा नहीं चाहते दरे खोंस अर्बन एरिया नो सोंस इन जेर इन दुख बाकी दिया नो गता चम से फंक्शनल चखाश थोमे दरे गाती पेट्रोल पाम ना आगे गाते अल्ताने टीवी स्टेशन हजो देखा दी थूर साइड लाफता ना यदि मतलब अक्षमल साइड लाफता ना गता खोंस एरिया एक्सटेंड बस दे म्युनिसिपैलिटीज अर्बन एरिया लेकिन दिया नो गता सही तरकीक थोमेंदु जुदियां गज ओसी लास का तो बार गशे तो गज बसे गता जुन गला बसे जो लोग देश को लचे जैसे मेरे पानी
0: कस जो दून है ना आता जा मेन पन है जा बेटर आता दी पब्लिक पार्क्स कच्ची क्यों ना करते जैसे कि
1: पार्क है
0: या
1: जो कस
0: दे आता मल्टी लेवल जैसे कि देन व्हीकल पार्किंग सब
1: कस
0: जैसे हम आती जान लोग ट्रैफिक कंजेशन मान जमित
1: बिल्कुल
0: अच्छा जैसे कि फ्लड वलड होना करता
1: फ्लड
0: फ्लड प्रोन
1: होना
0: एरिया
1: उनमें ला फ्लड
0: फ्लड
1: होना
0: प्रोन एरिया दे
1: जैसे
0: जगह ने

0: Ali son ha juja ga.
1: Bilkul de jagan ne ngates daran na ta se sambat na se de float prone area no jan infrastructure na area.
0: Nang man mi ta
1: building chi mi cha chuk par was. Ya de river sa mati suru river di chan ne jum ya de lungma ne misal ki tor kan.
0: Nashis.
1: To dyun sa ga ta e ta zarurat du pa judan sa.
0: Kas.
1: Nashis.
0: Marche je sais moi. Chana ngates ze jo urban area sun ya no ngata di tor se lasna ka to yon cha zin zere. Yang ngates urban area sun ibarang urban area sini ngatas kato las la kato stana kato ngati kargil ngato ngatal tan ngata sa wat de yan chu chis bu jo ngata traffic i thon jo dar de ngata jam do section do kha jo cha traffic i ek management ching ati urban area na nok chuar go sha do cha urban dar ngati private vehicle na taxi ya khas tar par private gadi ngati district kargil an man khimo song lekin de yan ngata dar ngati district administration i taraf siang चाहे ट्रैफिक की प्रॉपर मैनेजमेंट सिखाता हूँ थोड़ा मैं या कभी कभी जाम सों से आधा घंटा एक घंटा आलू सिंधु एक छोटे से शहर चे आनुगाता हूँ जिसे ट्रैफिक छेंदु चाहे दिया आनुगाता हूँ टाउन या आनु लसनान सा मैनेज बस एक दिन सस्ती बस टूल बाहर जो चाहे मुस्तफा से बेहतर मल चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट आनु या मिसाल अर्बन एरिया में हाजू देंगे जगह कम दुख दे टाउन या आनु ट्रैफिक मैनेजमेंट बचा था जरूरी दूंगा ती मिंगना गाड़ी जक्सा जो चाहो कसा
1: कसा जो कसा हाँ ती ये ध्यान रख ट्रैफिक मैनेजमेंट पर नमन ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है जब ना मतलब एक तो जगह तंग हो
0: बिल्कुल
1: व्हीकल सब बड़े चीन हो
0: बड़े चीन
1: तो एक तो सबसे दी मेन बेस्ट मेन पर ना बताऊँ ध्यान रख ट्रम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रमोट पर ज़्यादा चाहो जैसे कि बसेस ज़्यादा मती ज़्यादा दून ला ज़्यादा मत
0: अच्छा दोनों आनु जो उसपास सुनते गाड़ी कम चला जो
1: कैसा दोनों आते हैं दिया नो जैसे कि ट्रैफिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक आते हैं सिग्नल सब जगह जगह आनु सेंसर जैसे कि दोनों आनु आते हैं या क्वेश्चन या एक ट्रैफिक रूट पर आते हैं बढ़िया बसे आते हैं चौर बस दूसरा जगह जगह जैसे कि सिग्नल ताना का तो या दयानु जैसे कि स्पीड लिमिट पर जाता हो या दयानु क्या कोई लॉस नंबर दमों से ट्रैफिक लॉस नंबर दमों से दी फिलहाल आती बेनिफिट चिक यंग एक रास्ते के जन्नत का तो ये आती नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन दूसरे जन्नत जैसे कि आते ज्यादा से ज्यादा तो आती हेल्थ ही फिलहाल ज्यादा है चीज जैसे नींद ला आते अवेयरनेस ताँचा नींद ला आते बढ़ावा ताँचा मतलब साइकिलिंग ही जरे नियन में सब हम साइकिलिंग इस्तेमाल बचा साइकिल वाइकिल या ठीक है सबसे ज्यादा आती मैंने मेन पर आता है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती है जहाँ कर लेना जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बिल्कुल खस्ता मतलब
0: पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुनते प्राइवेट व्हीकल कम बचा मसल की टाउन एरिया की गाँव सक नो शिफ्ट सौंसे मी सक टाउन नंग तंग या दोस्त बस काफी दिया चैलेंजेस छे मुश्किल छे गवर्नमेंट इस एक टाउन ही प्लानिंग चिंग माना जैसे मिंदोक और ऊपर से एक जगह का नंग पांचिन का कच्ची बच्चिन जरे जरे आती बिजली पोल चिंगिन न संग आती टाउन यानो या गा टाउन चिंगिन न संग लद्दाख लेकर के लिए इसके अनुसार शिक तार सक जुआ रिसी का दोक चाहे जो लगा था खतरा माना मामूत होने जो चाहे दूसरे बसे एक टाउन यानो गा चौसला आते ची बसे तरक्यात बच्चिन जरे चाहे दियानो दरे आता स्पेराज ची तो जो वाटर क्वालिटी है जो टाउन यानो वाटर क्वालिटी सही उम्र को दरे छु फिल्टर बचा जैसे में ना जो छु मिसाल के तौर पर गंदा छु फिल्टर बसे दरे गाती करगी लगती सिस्टम पर मैं थोमेंदु देगा था
1: ड्रेनेज सिस्टम
0: दरे मिसाल ये गाता जम्मू शहर था जो जम्मू शहर ने का तो मिसाल के तौर पर दी पाइपलाइन अच्छी या खाचू लक्षण छी पाइपलाइन दोन दे फिल्टर बे खोरा अलग नंग तो उसका तो चुस गाने अनु छु फिल्टर बसे ना लेकिन पब्लिकेशन दो लेकिन गाती दिया अनु छी वे दी छी गड़े हंगान पर फिल्टर छात चुक टेंकर लगेगा पर लेकिन ये पाइप इशू है शायद इसमें फिल्टर सिस्टम चिक माने मैं पेंस जो चाहे मैं पाइप इशू कभी गाता सकूँ
1: दो ऐसे जरूरी आती है आती है सूर्य ज्वार पर ज्यादा पोल्यूशन जैसे कि आती है सीवेज पो आता है तो ट्रीट मोबाइल जैसे कि देखो डायरेक्ट देखो
0: चुके हैं चाचा हाँ जो चाहे यार जरूर तो मिसाल देंगे आती बाजार एक गली जो है नली सा था जो ड्रेनेज सिस्टम और उधर छून सा डायरेक्ट एक फिल्टर से तो शिमाशा फिल्टर बस रिवर आता ना मैंने बाकी छू मखलूकात।

0: Zumit,
1: 96 hai jo pollution se agriculture de india na che migrate son se town jagah nang ta se khan sa jo de misal ke tar pa ata di ka kurbata area ke thong jang ata di baru ya main town ya nang ta nang ta se mal erder na yong se de nang ta sa ta mang mo thong chan oduni masel po ga tsok shik cha cha dok cha zar bana ek to na dyan urda shik kem sa em sa sa management chan har galiyan lok de municipality pi gadi jay ka chi ga le ba mindu Changjiang administration is got Soshiba Sejan Laska to Bargo Shaduki, Nang Daringata, Kimoshen of Day. Administration is Missal Ketorpa, Konga Chu Lepchucha, Yakonga Washroom Chocha, Soma, Town Dan and Chenot, Tengati Tang Saika. Udun Lagas of the administration is Nigranika to Japara Shaduka Sades College. At
0: the Matidan town, Pujasiki town area, Badation
1: Filanchen,
0: Filanchen, Adunatis, the Ramatis, I did town the Bahar outskirts, Malab towni Bahar Langatis, I did facility Samatis,
1: Churgus,
0: Chesmana, Sakmati, and one at town on Sandaman. To Adil Matan facility, you know, the Rainian support the urbanization, though, the second
1: man,
0: Pelation, the Kargil city town said, Nukza, Matis. Then a maba focus majapa baki facilities sangate jaise ki outskirts jaise ki do sangate sath baki de 10-20 kilometer baki ngati anga ilaqa
1: na aspas
0: adun ngate de facilities sunya da town is ulate da chur rugosu bi bakhshis
1: kasa ju sering mo cha dare ngate ngati khatela da khan ya kargil anka tultana ka to yan kan yan tir tafe mi nezer na ka to ngates nyan mitik na di urban development tika ngati administration is on las be dia ngata zarurat tok ya dia no misal ki tor par ga jaga chika shir go shat na ya ga jaga chika washroom chi chwar go shat na ya khas tor par main chis be dia ngata traffic management ni dok dun ga mangates ngati town ni nanuk be ngata zarurat tok ya ngas chi diga de mustafa saib is ki ngates ga drainage system chi chik chet na तो चुके हम अच्छा चुक पाए दो गाते जिन में सब कहा जो ट्रीटमेंट बस है मिसाल तो फिल्टर बना ची बना गात वाला बना साइंटिफिक एक प्रोसेस ही का तो सब बस ने गाते चुके हम पुत्ता जा चेस में दारे दियों गाता जगह ना गाती सक्यात लाश नो चीन दी चुके हम दी गंदगी तांचा वह जो या चुके हम तो मखलूकत सगं गाता आश नो चा है चा जिन सुक चा दी लसुन गंगमाज बस है गाता ची सचिन गाता नुकसान हो चा जिन चा ना दारे गाती मालसा मामे नो तने का तो गाता थो मशीन जो खास तौर पर जगह मामे का Washroom and Saiba said Dulba Minduchana, administration is unique and other towns say Hastor Par, Matis Soma, Felicia, Kani Jaganica, just a carrying at the Spiratana, Kurbatangi, Jaganica, ya TV stations of Sunikaju, ya petrol pami, aspas, ya Matis Andose Agi are the council secretary in Mazlatana, Deanu Nang Badishinduk, Baki Hati on Badishinduk, at least a mana ninsing atak washroom chitoshing atan around the Gatoma, Minduhaju, China, Duna Kongata. Mana khachan chishin ki washroom zarema du mana basic chishin du mana ata zarba mirgos par goshin chasma du ata ga jaga ji ka yotcha mana zarurin kyunki du ata di chis piano ata jab tak washroom chos mena ata yancha men tu ya chana lajuk pe ke res ngati nyan khan la ga tsok si ek message shi ha jo pegam chita ki ngati yulun cha kharkhorun cha safai jap me na jo ga tsok la ngate chi bar goshin या ची बसे गवर्नमेंट लगाते हैं म्युनिसिपैलिटी या गांव इन ना शहर इन ना ताऊन कॉर्पोरेट ची बसे बार गोश इन दे बार उन्हें यार जस्ट चमेर बनी
0: कैसा जो ये मैसेज पुना दें जो आती मतलब आते नियन में सब पुनाते वैसे भी आती कारगिल माशाल्लाह से बाकी जगह ने आती ना सफाई को जमीत ख्याल जाओ
1: बिल्कुल
0: बाकी जगह बस आती गंदगी आती खरखोल आती कम थो
1: कम थो
0: तो जाओ मतेस जारी जब जाओ सब सब बाकी आता बाकी मतेस आम मीन तो मतेस तांचिन जो है बाकी जैसे कि दारे थांग कुछ बताओ उन्होंने क्या जमे दुकान दुकान जमे सोसो
1: बिल्कुल
0: तो यारांग मैसाल के तो बाद इस नस्ते यारांग आदे सेंडर जगह यूं ना करतो आदे हम आता मतलब पब्लिक ने मना थोमे में दुक वॉशरूम चीज हो सी सुई ना करतो जा पिस्तान बाद इस तब नहीं आनो
1: गंदा शहर है जो बिल्कुल
0: ना चीन दुक बाहर पर जैसे लेबर यूं ना थी तो दून सब यारी स्पेशल दिया कि मते दें वॉशरूम जो मते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना मती यानी बाकी मती मीन ना उन कामती काफी साथ तमान युद्ध
1: कस सर मुझे मुस्तफा साहब चैनल लजुक पे क्या सर चेक ऑल इंडिया रेडियो कारगिल चोस ने यार उसे सर मजर सर की यार जरिए रेंटो जन वक्स ने वक्स पिंग से कारगिल स्टडी का स्केच जो या अस्सलाम वालेकुम दरस पे तो टीसी के नतीन मोहम्मद मुस्तफे का ना दैट इज सुन हम बहुत दिरिंग इस सगे दी प्रोग्राम में वक्स पूछो हम खुदा रन ना यो मेजा को ने यंग यंता ने बहुत सगे दी प्रोग्राम ने तो चा दे सु पे

के लोग सगा पीपल सगा उदे जिसमो कोई भी स्पेसिफिक जिसमे बारे में इंफॉर्मेशन लेप चुचा डिजीज पोचिन जिसमो चीन तो जी वजह कसम सिंह तो दिए मतो इलाज करते नहीं ची बस जो नहीं करना बचाई है चीन उदे नहीं बारे इंफॉर्मेशन तंग में फिला यानी पता चल चुपा अवेयर बालोगा इसलिए दीजा हूँ गनेरा शख्से इंसो नि हाइपरटेंशन बीपी ना मते सिरे बीपी दुख से लेकिन दी बीपी उचीन हाइपरटेंशन पो गनेरा चीन जर बनारी गनेरी लेफ्ट वेंट्रिकल पो जहाँ पे गती हार्ट इस पंप बेतां लेफ्ट वेंट्रिकल पे अनो ना गनेरी एयोटे थ्रू गनेरी बॉडी पार्ट सकाची लेप्चेस इंजू क्रक लेप्चेस इन यानी बुलेट लेप्चेस इन जिस के लिए गती हार्ट पुस पंप बार पंप एक वॉलेंट्री ऑर्गन चिकन जो कि गति मर्जी का डुलचस में ऑटोमेटिक डुलचस इन इसलिए गति हार्ट पो ओ छन निमा पम बेन दुखचस इन कभी रुकाई छचस में यदि क्रक पुछेलम जिगो छस इन दो लंगा नियर इस आर्टरी जेवेता ओदे आर्टरी हम नंगा नियर क्रक पो नॉर्मली फ्लो छेन छस इन लेकिन जब कोई ऐसा कॉज कोई वजूहत की वजह से गनेरी क्रक कोई फ्लो कम सुन खिल नरिक उदे खरे देन ना प्रेशर पोंगन येरी आर्टरी वॉल पिका आर्टरी सिक पाने का दीवार पिका चाम से खुश प्रेशर तान दो अगर उदे प्रेशर पो नॉर्मल से खिमोगा तो तांगने ना दो लगन येरे हाइपर टेंशन जस्चेस इन हाइपर टेंशन अलग अलग नोचेस इन यानी चिकचे 140 आयों चिन चिकचे दो बस यहाँ चिकचे 160 आयों चाहिए यहाँ चिकचे 180 आयों चाहिए नहीं 140 तो बस हाँ 180 बोली क्यों जिक्स मौसम देख माने क्यों मौसम ओ या उदून पता बेमिंग ना गतिस दून अलग अलग कैटेगरी आनो गनेरेस डिवाइड बस चुतिन जो सबसे पहला अपनी हाइपरटेंशन जर खंचो चुन जो जिसमें गनेरेस 120 से आगे 139 तक पे जब लेप सिस्टोलिक पो और डाइसिस्टोलिक पो गनेरा 81 का ना 89 तक पे लेप नरी मतिस चीज चेस इन प्री हाइपरटेंशन तो जैसे दो न्यून कभी कभी कोई फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ जो कहाँ स्ट्रेस की वजह से या जिस चीज डूले हों से हो या जिस चीज लिप चाहत हों से ना बीपी चेक पे तो उन्होंने उन्होंने गनेरा ज्यादा अल्टन चेसिन इसलिए बीपी नाम सालें जाना पहला आदेश चिया गोशिन की चाहत हों से में ना दरे का तो कॉफी का तो मात हों सा या डूले का तो मोस भी ना हाँ जैसे टीचर से अगर उदो का तो इन नरी गतिस बुलिक इंतजार बचिन 10-20 मिनट आगे हिसाब से उदे जब नमीने गते बीपी लेंचस में स्टेज फर्स्ट त्यानो गनेरी 140 से 150 तक पे सिस्टोलिक पोलेप्चिन और डायसिस्टोलिक पो गनेरा 90 कने 99 तक पे लेवल लो सेकंड स्टेज पे आनो 160 का ना 179 और डायसिस्टोलिक पो 100 का ना 109 तक पे लेवल तो आते स्टेज सेकंड जिसे से जब मता मेडिकेशन ने उदुनी जरूरत चेचे से स्टेज थर्ड पे आनूंगा नेरी 180 का गेन लचाना दो माने शिक्स मोस होंदे 110 का गेन ला कतु लेप नरिंग डायसिस्टोलिक पूंगा नेरा दो बुलिक एन बसं बुलिक शिक्स मोरी इंतुंगा नेरा एलर्ट छा कुछ है इंतु उद्यांग नुना एक अर्जन हो चेसिन एक इमर्जन हो चेसिन इमर्जन पे आनूंगा नेरी ऑर्गन उन डेमेज छे चेसमें अर्जन आनू ऑर्गन गति मेन ऑर्गन बॉडी हार्ट यूत किडनी यूत ब्रेन यूत उदोन डैमेज उदोन ला नुकसान दामे खतरा छे जैसे जब बीपी माने कीमो बड़े ही जाना दो मेन मांग गति बीपी प्राइमरी सेकेंडरी जरे उदोन अनुना अलग बसे होती जो प्राइमरी हाइपरटेंशन पोगा वजह चीज में दी चांग वजह गनी रहा पता में अननोन आइडियोपैथिक जरे ता मेडिकल टर्म यानो यानी चांग वजूहत ची गनेरा पता में सेकेंडरी हाइपरटेंशन चीज चीज तो उदे हाइपरटेंशन प्लस चीज तो जब मता बीपी सुन से बट यंग से मोची वजह का सो फॉर एग्जांपल गासूची का किडनी डिजीज होता बहुत टाइम से उदुन लचे खतरा है जिन क्योंकि गति सोडियम उन बाहर लमा छाना नंगोस पे हाइपर वॉल्यूमिया छ छ जिन वॉल्यूम जब ज्यादा छाना बीपी ऑब्वियसली छ छ जिन इंक्रीज छ छ इन जो यंग कोई लिपिड्स गति ज्यादा सुसना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा सुसना फैट जमा छ छ जो वेसल्स ब्लॉक पर छ जिसकी वजह से

जहाँ से ऊपर था ना ज्यादातर सारा चीजें बीपी चेक करनी होती वैसे लोन कमजोर तो सोचे लेकिन हार्ट ही उवत पुदे से लुशा में या गति किडनी कुले कुले कमजोर चेंज है जिसकी वजह से गति बीपी आम छा छिमी सागानु निगतान दू चीज बा नेंचे जिना खे एज पु 85 कना मते 20 का कोम नेंचे जिना ओ या नेंचे में दुले नॉन मॉडिफाइबल से चेसे फैमिली हिस्ट्री या फैमिली आनुना चिक चिक आमा यो भाई बहन अताल है यो नेने फूल है यो उदो मते चेंज बा नेंचे तो खे अताव चेंज बा नेंचे ना बायंजमिन या मति जेंडर से बोमो सा वसा बुसा सा हाइपरटेंशन ज्यादा छे चांस है मीडियम चीज में आता चेंज वांग है चेस में उदो लगाते नॉन मॉडिफाइबल चेस इन मॉडिफाइबल चीज चेस इन जो कि आता ब्लड कंट्रोल बाय है चेस इन ठीक बाय है चेस इन उदो लगाते मॉडिफाइबल चेस इन जिसमें सबसे पहला आता ओबेसिटी हो तो ओबेसिटी चीज चेस पहला स्किन का फैट लिपिड सख जा मचाना लिवर ही डिजीज ही छाना उदे वजह का बीपी छ चीज इन दिस मोटा मोटा पंगा नेरा खत्म बाई है जिंग आते वॉक और डूल एक्सरसाइज बोस या आते फैटी चीज सुन फोन अवॉइड बोस फैट उत खनी चीज सुन आते आते जान ने का कंट्रोल बस ओबेसिटी कम बाई है जिंग दे फिलांग आता मॉडिफाइबल चीज इन चु यंग मॉडिफाइबल हंगा नेरी डायबिटीज ओं चिंचु का सोचे शुगर इन उदे वजह का बीपी बढ़ाई है चेंज या सेकेंडरी लाइफस्टाइल का तो ना लाइफस्टाइल पर ठीक में नकस में धोखन सख्जित या स्मोकिंग की वजह से मति मोशरियां तो मत आजकल चुनते प्रोनी सा स्मोकिंग हो लेकिन कौन पता यों ममित की स्मोकिंग वजह का चांसिंग मति हेल्थ का इफेक्ट चिंग मति लंग्स का इफेक्ट चिंग मति ब्लड प्रेशर की वजह का छह चिंजरे थोंग जिक मति जो नजर अंदाज पे लेकिन डीजर हूँ एक दिन में हूँ जमीन जिस चीज़ में ती प्रोजेक्ट चंग में शायद खोज थों मत पिन आस थों मत पिन जरे यंग मिंगा बंचिक स्थाने तंगे लेकिन कोई चीज़ एक दिन हो जस्मिन और जेर यंग हो जस्मिन किसी भी दिन गने रहा हो जस्मिन और तेरी स्मोकिंग होने स्तुत्पाने मरे रिश्ची गने री वैसल उन उधे क्रक छेला मुंची बेचू चुन्से बस तंगी बाना ओब्वियसली उधे चारगोस प्रेशर ज्यादा चारगोस या अल्कोहल वजह का चेचेस इन नीडी ची अलामत हों चेस इन दर बना मैंने ये हाइपरटेंशन ही पहला चंग अलामत ची यों ममित पहला चंग अलामत ची यों ममित दे फिला मैंने रिस एडल यंग लोग छोको सा आनुक हाइपरटेंशन ला साइलेंट किलर रंग जस चेस इन मिशेस पिका नुकसान ताजा मिशेस पिका चेस बना गतां पता मचा चुज दे अलामत चोंस पे नंगा दूध उसे चेत है लंगा स्टार्क चीज़ बेचता है दूध खोस अलामत उन चुच चमें मुंह चुपना चुपके से कुलिया कुलिया गनेरी ऑर्गन सख्ती बनाचें खराब बनाचें दे फिला गनेरे हाइपरटेंशन ही दूसरा में बहुत साइलेंट किलर जरे इंसो निजब गति बीपी की मुझ खाना गने रंगा तो अलामत का तो नोचा सिं जब बीपी गा जिसे स्टेज अलग अलग मजर सा उदे सेकंड थर्ड सिचुएशन के लिए बना गता दी अलामत तो नोचा सिं गोमे का यूं चस में और ये नीची छचिन से बना सबसे पहला हेडेक छचिन ओब्वियसली जब गति क्रक पुठी पर से माले बना हेडेक छागो दे गनेरा एनर्जी फिया लसी फिया ऑर्गन ग्रो छे फिया क्रक को से जब क्रक को माले बना क्रक को सप्लाई मचाना गनेरा हेडेक छे गुआजर मोजस इन जो जब क्रक को माले बना गनेरा चक्कर मचुक छारोस और गनेरा कम थोंचेस जो ब्लर थोंचेस जो ठीक उस दम खाने से रुकूं नोचेस इंजू दो मिन मजब माती बीबी मन खिमो का तो छाना मता एपिस्टेक्सिस छेचन तो जिसको मती इसका ध्यान हो अंदर रूपिस खराब में ता यानी नोज ब्लीडिंग मती जिस्चेस इंजू या मता ठीक कैसे खून पहुंची बॉडी हमारे बना पार्ट सा हमारे बना मने रहा थकावट छेचेस इंजू ब्रेन पुला मले बना गाने रहा जी छे छे जिन्सु से बने कन्फ्यूजन छे छे जिन्सु नोर्चा जिन्सु या कम थों

चुकुली चिसुंगामा छचस इंचुंग दिरी हाइपर टेंशन यानी बीपी वजह का जब बीपी बहुत ज़्यादा खेमो छाना निंगाते बीपी दुख से रिची बस पता बेच बना जब माता 18 साल के लिए बना माते स्नाती बीपी चक में दुख पर होशस इंचु ताकि माता हाँ पहले ही पता छो दी फिलांग आते सबसे पहला हिस्ट्री का लेख पागुशस इन जो पेशेंट जो मना कोई करना हिस्ट्री का लेख भी क्वार्टिट क्या बीपी नम न सोचे करना सो फैमिली आंसू का बीपी होता उम्र सामिन बहुत सारे कोई हिस्ट्री कलेक्शन भी दो में मा एग्जामिन भी फिजिकल एग्जामिनेशन आते रेटिना सगलते आते आई रेटिना एग्जामिन भी जिसमें डैमेज का तो मासूम सोजरे examination batches in ode ilawa ngate cbc check batches in to khuni jaanch batches in to jisme ngate lft kft udun dalta che jun jis ki wajah se ngata mati kidney function liver function sakti che che jun to pata che che in to aur ngate urea creatinin udun dalta che in to ode wajah ka ngata mati kidney फंक्शन भी पता है जैसे अगर किडनी फंक्शन भी ठीक बस मचा ना आती नंगुल तक सोडियम ना वाटर उन खाते लोशन जिसकी वजह से हाइपर वोलीमिया चाहे और सोडियम पो इंक्रीज छाना बीपी खुद ब खुद चाहे दून गाँव में आते जी बच्चे जो जांच बच्चे जो कोलेस्ट्रोल लिपिड उन लगता जैसे जो जिसके लिए आते लिवर फंक्शन टेस्ट बच्चे इंसू यानी आते थायराइड सा चेक बचें जो दोनों आते हार्ट ईसीजी बचें जो जिसमें आता हार्ट इमेज तो चाहें यूएसजी बचें हार्ट पे कच्चा इफेक्ट का तो मासूम सोच रहे हैं उधर चेक उन गांव में बचें यूरिन आते चेक बचें इन यूरिनी जरी का आता हम पता चाहते हैं जो नी दून गांव मासूम को डायग्नोस ची जिसमें पता बच्चा नीचे अपना तांग पता समो जिसमें दुख जरे नाते ची इलाज बच्चा जिंदगी जिसमें ले ची इलाज बच्चा जिंदे बना माते दिया नुक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तांग चा जिन ड्रग्स जिस मल उधे एंटी हाइपरटेंसिव जो बना बीपी कम बेस मान खाची माते तांग उधे आनु माते ACE inhibitor जो खनिस मन पुतान बीटा ब्लॉकर तां कैल्शियम ब्लॉकर तां या डायूरेटिक से खनिस मन उन्तां नीतिस मन निश्चित वसे मदद बच्चे से इंतज़ार बना ARBA जो खनी एंटी हाइपरटेंसिस मन पो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो खनिस मन पो इंतु दी एंजियोटेंसिन पुस मनेरी एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड ओडोनियम कन्वर्ट छटु जमें जो अगर ओडियम कन्वर्ट छना आगे आती ब्लड वेसल पो कंस्ट्रिक्ट बचे सिन जो जिसके वजह से बीपी चे छे सिन जो इंक्रीज छे छे सिन जो इसीलिए आते एआरबीएस देखने समान पुतां से ओडे एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू सेकंड टू नियम कन्वर्ट मचा चुपा ओडो ब्लॉक बसे तांचें जो ब्लॉक बसे तांचेस इन तो क्योंकि ओडोनिस मती एड्रेनल ग्लैनी का सोंस फंक्शन बचेस इन सोडियम ना मती वाटर पो नंगोल तकरी एब्जॉर्ब बचेस इन मतां हाइपरटेंशन उत खानी मरीज पे आनु ऑलरेडी सोडियम नंगोल के खाते होत ऑलरेडी किडनी का इफेक्ट सोंस होत ऑलरेडी चो खाते होत हाइपर वोलीमिया सोंस होत दिस मन पुका तो मतां नारिक मती उते एंजियोटेंसिन निश्चित बचिन थे बथे सोडियम सक उन खाद जो से बीपी माने के मोचे चिंदे फिलांग आते जो ब्लॉक बे फिला एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर तांचस उसके वजह से मैंने यारी सोडियम ना वाटर पूरी एब्सोर्ब छेचस में नंगुल दिक और उदिस मानुन यंग गागास मानु मोचे सिंजे बना टेलमी सार्टन ओलमी सार्टन जिखनिस मानुन मोचे सिंजो और दिस मन पो गा इंसानों ना तां जमीन जबना गांवला हाइपर केलेमिया योता गा सोच कि पोटेशियम लिवर पो कतो ज्यादा योता रे उदोन लगातेस दिस मन पो तां जमीन इसीलिए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर तां मावसा पहला मरीजी ही पोटेशियम लिवर पो अनेरे जरूर ची बचे जो चक बचे जो खास तौर पर सीकेडी कोरोनिक किडनी डिजीज उत्खनी पेशेंट करने क्योंकि कोई किडनी खराब इतना ऑलरेडी कोई नंगुली

0: आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: बुजुर्ग लोगों को बालकनी और आउटडोर एरियाज में निकलने के वक्त एहतियात बरतना चाहिए। रेलिंग पर कभी ना झुकें, गीले या फिसलन वाले वरंडा या जगहों पे एहतियात से चलें। बाग में ज्यादा झुककर और घुटनों पे बैठकर काम ना करें। बाग में तेज चीजें एहतियात से इस्तेमाल करें। दीवारों पे सीढ़ी इस्तेमाल करने से परहेज करें। भारी चीजें उठाने से परहेज करें और पौधों को पानी देने के लिए लंबे हैंडल वाली चीज इस्तेमाल करें। ज्यादा धूप और दोपहर में बाहर ना निकलें।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन है। इस साल का मौजू है, मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बीदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बीदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। आज ही टेली मवासलात और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। आज के दिन इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन नीज मवासलाती टेक्नोलॉजी के उन इम्कान के बारे में जानकारी फैलाई जाती है। इस दिन की मुनासबत से आज द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के रीजनल सेंटर श्रीनगर में भी एक तकरीब मुनाकद हुई। इस तकरीब में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में वाक़ तारीखी मार्तन तीर्थ मंदिर में आज से महाकुंभ मेले का आगाज हुआ। इस मेले को बन मास, अधिकतम मास या पुरुषोत्तम मास के नामों से भी जाना जाता है और यह मेला एक माह तक जारी रहेगा। इस मेले में कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद शिरकत कर रही है। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि मेले के आगाज पर ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा और एमएलए अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान भी मौजूद थे। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए सतीश शर्मा ने कहा,
2: श्री मार्टन तीर्थ ट्रस्ट मटन अनंतनाग, इनका बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरा है। तो कहने का मतलब है, आज जरूरत है वसुदेव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, VR1, और हमें सबके भलाई के लिए कामना करनी है। हमारी ताकत इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हमारी एकता, हिंदुस्तान की एकता, जम्मू कश्मीर की एकता की आज जरूरत है। जो विश्व में माहौल है अच्छा नहीं, तो यहाँ से मैसेज हम जम्मू कश्मीर के वासियों का, फॉर ब्रदरहुड, पीस, प्रॉस्पेरिटी, और हम कोशिश करेंगे वही माहौल तोड़ने वाली ताकतें चप्पे चप्पे पे हैं, जोड़ने वाली कम है। तो हमें उन लोगों को उजागर भी करना है जो मोहब्बत का, इंसानियत का, प्यार का पैगाम दे। हमसे बेहतर धरती कोई नहीं, ये ऋषियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है।
0: ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स ने सरकार से कहा है कि वो श्रीनगर शहर के ऐलान शुदा तरक्याती और तामीराती प्रोजेक्टों पर नजरसानी करके माहिराना राय हासिल करे। ग्रुप के चेयरमैन और साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा है कि कॉन्वेंट संगरमाल ब्रिज और फ्लाईओवर के अलावा डलगेट पारिमपुरा फ्लाईओवर के मुजवजा मनसूबों पर तामीराती माहरीन की राय हासिल करना नागुजीर है। इस सिलसिले में GCC की एक मीटिंग मुनाकद हुई, जिसमें अच्छन प्रोजेक्ट का पेशावराना तखमीना लगाया जाना चाहिए। कश्मीर की सकाफती विरासत को तहफ़ फराहम करने के लिए काम करने वाली कशीर हिस्ट्री फाउंडेशन के अहतमाम से श्रीनगर में द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल के नाम से मुनक़द हुआ 3 रोज़ा प्रोग्राम आज इख्तिताम पज़ीर हुआ। प्रोग्राम के तीसरे रोज आज भी मुकर्ररीन ने कश्मीर की वसी तारीख पर मकाले पड़े। फाउंडेशन की डायरेक्टर सुनंदा नेहरू गुंजू ने प्रोग्राम के दौरान अंजाम दी गई सरगर्मियों के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
3: फर्स्ट डे था वो मेनली हिस्ट्री के ऊपर था, कश्मीर शैविज्म के ऊपर था और हमारे एंशियंट रूट्स क्या है, सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। सेकेंड डे पे आइकोनोग्राफी और स्कल्पचर जो मिडिवल कश्मीर में था फ्रॉम 7th to 12th century, उसका जिक्र था। सलीम बेग जी ने ही टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी क्यूजीन। रतनलाल हांगलू जी टॉक्ड अबाउट एवोल्यूशन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। डॉक्टर एजाज नक्शबंदी ने श्रिंकिंग वाटर बॉडीज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बात की। क्राफ्ट्स के बारे में सलीम बेग जी ने बात की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेशन हमने आज लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया, कर्नाटक म्यूजिक और वनवन का क्या रिजेम्बलेंस है, और लास्ट था हमारा ऑन आर्टिस्ट ऑफ कश्मीर। एक सबसे बड़ा टेक अवे मेरा ये रहा कि लोग बोलते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर के मुताबिक, हमारा एनवायरमेंट, हमारे क्राफ्ट, हमारी हिस्ट्री, म्यूजिक, किसी को कुछ पता ही नहीं है, और ये आवाम तक पहुंचाने की और स्पेशली यंग जनरेशन को पहुंचाने की बहुत बड़ी जरूरत है।
0: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हर सतह पर आवाम की राहत रसानी उनकी जमात का मंशूर रहा है। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए

फौजी भाइयों, ये थे शब्बीर कुमार रोसाथी। फिल्म का नाम था कुली। प्रोग्राम की अगली पेशकश बेताब फिल्म से गीत, जिसके लिए शब्बीर कुमार का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

शब्बीर कुमार वाला का एक लता मंगेशकर को अभी आप बेताब फिल्म में सुन रहे थे। अगला गीत हमने जानवर फिल्म से लिया है। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और मनहर की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

फिल्मी किताब आकाशवाणी कारगिल से समाप्त कर रहे हैं। प्रोग्राम है फौजी भाइयों के लिए। फौजी भाइयों, आपका प्रोग्राम जारी है। अगला गीत हम एक छोटे से वक्फे के बाद पेश करेंगे।

ये थे कुमार शानू और अलका याग्निक। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था नदीम शर्मन ने और फिल्म का नाम था जीत। अगला गीत सुनिए जानबाज फिल्म से, आवाजें हैं किशोर कुमार और सपना की।

प्रयागराज और आशा भोसले के गाए अल्लाह रखा फिल्म के उस गीत के साथ ही आज का फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम का खत्म होता है। कल तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।

0: और संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वरीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। ये भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद

0: चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
1: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
1: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग NCB और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक NCB मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के NCB मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

वित्त साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत

समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ

दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को कल केरलम के नए वज़ीर-ए-आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फरोग देने और आबी वसायल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोथेनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़ीर-ए-आज़म की एक मुश्तरका खिताब है जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीशन को केरलम का अगला वज़ीर-ए-आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में दो तिहाई से ज्यादा अक्सरियत हासिल की, तहां मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वज़ीर-ए-आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीशन कल केरलम के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वज़रा भी हलफ लेंगे। नामजद वज़ीर-ए-आला वी डी सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वज़रा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति

0: आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हिंदी अंग्रेजी दोनों में खबरों आकाशवाणी मीडिया में तुर्गेनांगी शुजबिन अब्जी कुल्हर्स एफ एम रिया शरीजिक मेगा हर्ट्स दोनों मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर कांचल्स आकाशवाणी करिए लिखना जरूरी न्यूज वक्स पोस्ट हन बाजार को मिनट सुमचु सोसियन मजद बल्ती प्रोग्राम गस्कत प्रोग्राम सिर तंसे फुटचु खान पोन सोहेल अहमद

0: चरस ना, सिगरेट ना, सुईदा ना, नसवर योन सिंगन यरी रुगे नाल जो कुनले गन परकंदा बेस फंगत अम योन कना थगरी दुखना या नत पंगन याला बेर पमेत जरे अम दोन पते ससा चीन सुजे बना वक्त वक्त का उम्र ओमे हिसाब गन यंग से डॉक्टर ला मलपा रुजु बेंदु पर गोसे जु गन यरी सेहत हिसाब का गोनले रेन मोचेस ना बेखन कुन दि जक पो माइल दे चुबदुन ला लोजर कम मलिन खोमी इंसु देबना दि जक पो सन 2005 शी नुकना या खला हाइपरटेंशन वोल हाइपरटेंशन लीग सी मल खोंगिन चु योत पिनसु दो दिरे सखोंसु अम्मा या जक पो मलिन खोमी टोन पोजेस नजु हाई ब्लड प्रेशर यानी दि खामोश कातिल इन मिन्नत पे कना छोर दुख छा दे बना म्यून ला छोर ताचा द्वीगी यानी 2026 वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे थीम पोजेशन रेजो रंगी ब्लड प्रेशर कुन या रंग ब्लड प्रेशर ठीक कुन मोजिन को चुक यो रंग कंट्रोल ना काबुन यक्चा दे बना सेस का मिलम कुन या यर्गेस ले खेचा गुणले कसल कुन दिख परोन का छसा बेसे स्नगा व्या ngani ala met khame din yon ka met khame snga jak cha distro khir chan nat po yani blood pressure po ngatir gola legina not khe chan nat chin ngon ngari speran legina dal da soju sahmas tot khe yadan sna be khan kun sak pa thon chuget tot kha zer khan poin akhun ba qirzi shan tot kha lai dan ses na yos ya bismillah tot kha yada jamat sak pa bastan son tot kha zer khan poin pa akhun ba qirzi shan program rgas kat akashwani kargil yale kasal kun gana chikanangan yang thagri dugna warzish por legena thasa in ya de nat biar bi lam kunangan ya thagri dugpin yon ngal yal stakhfasung amma ngani yari jawan kun yar nat na ya nashili chis kun thagri jag pipela dose ya ngati namzen lokso lokso khel na lokso lokso palisin government stanginut यो नचोखला एनसीसी जरबोजु नेशनल कैडेट कॉप जरेजु यो दुसेया वक्त कुनिनु नन यरी जवान कुनिसा येनु बडचर के हिस्सा लेने ये येनु हिस्सा लेन फिका ओमयत वक्त कुनिनु खुताला योन कन रोजगार सा थोबे जु नौकरी या खोनला रोजगार थोबी लम कुन सा थोबे या एनसीसी नताला चाम से फनखे यो ये बिगा दिरिन कडा बेला दिरिन नई स्टूडियो नो Lieutenant Mohammed Hussain, lecturer environmental science, JME fiqh shakhsiyat. Yadi gana ngaya si kuala spere khayk thon chuget, ya bismillah.
1: Bakshi ju Suhail sahab, guana yare si diringi din si si barang kada be fila yare si ngadi studying mokik taans pi shukuriya.
0: Bakshis.
1: Sabse pehla na ngata या नंगाला दू पता गुआ रोशन की द एन सी सी ख्वांग चीन सुख नाम योस नति दि मुल्क हिंदुस्तान यंग
0: नाम
1: शुरू सो नाम दि लस पो स्टार्ट सो से और दी ची ची फायदा उत नति भू न बमु इसकला
0: बख्शीशु सरमो
1: वन आया नाला दिरिंग दि रूट जर मना खे मेन मकसद कुंची दुख देख नंगा से आला स्टार्ट बेत
0: बख्शीश
1: One of the NCC National Cadet Corps but the Dunla the organizations pong at the Hindustan in British time pegons when Angres kun at the Hindustan youth
0: time pegons. British time pegons. Bakshis.
1: That time pega the NCC Ming Boyala Zerna University Corps Zerbet Supa Pehleka.
0: Bakshis.
1: 1917 in Khon is due Malakhonsen.
0: Malakhonsen. Drain Bakshis.
1: There you have now. दो तीन साल गया अपने खोने इस दे मिंग पे यहाँ चेंज बसे यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉप्स शख्सिन सुख
0: बख्शिस
1: दे गया अपने यहाँ दो तीन चार साल चिकित्सा गया अपने खोने इस यहाँ चेंज बसे यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉप्स शख्सिन सुख यहाँ नज़र ना
0: लोकसो वक्त कल लोकसो वक्त तक कौन सा सोरिंग सुपर बख्शिस
1: गुआना अति हिंदुस्तान इंग ड्यू 15 जुलाई 1948 सिंह
0: बख्शिस बख्शिस
1: दिंग पहला यो 300 याल जरना दी एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स पो शुरुआत पे का याल सिर्फ बूंद सी फिला जक्सिन सुख बूंद ला
0: दिया बुसानी फिला
1: जगह ता